0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978855 या 6203139564।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-575।
9: सुबह सवेरी की इस सुहाना मौसम में हम लेके आ गए बानी राउर स्वास्थ्य वर्धक प्रोग्राम आपन देखभाल, जिमे हमने के रखे निशन आपन सेहत के ख्याल, आज याने निशन ढेर सारा हेल्थ टिप्स। दोस्त लोग, हमरा की तो रउआ पहचान थी बानी कि हम है राउर रेडियो दोस्त दीपाली। सबसे पहले हमरा ओर से सादर नमस्कार, सुप्रभात। दोस्त लोग, आज हमने के अपना कार्यक्रम के शुरुआत में जानल जाई मानसून में सेहत खातिर उपयोगी छुहारा के घरेलू नुस्खा। दुर्बलता होके पे 4 छुहारा 1 ग्लास दूध में उबाल के ठंडा कर ली। प्रातः काल रात के सोते समय उनके गुठली अलग कर दी और छुहारा के खूब चबा चबा के खाई और दूध पी जाए। लगातार 3 से 4 मास सेवन करे से शरीर के दुबलापन दूर होला और चेहरा भर जाला, सुंदरता बढ़ेला और बाल लंबा व घना होला और बलवीर्य के वृद्धि होला। प्रयोग नवयुवा, प्रौढ़ और वृद्धा आयु के स्त्री पुरुष सबका खातिर उपयोगी और लाभकारी है। घाव और गुहरी होके पे छुहारा के गुठली के पानी के साथ पत्थर पर घीस के एकर लेप घाव पर लगावे से घाव ठीक होला। पलक पर गुहेरी होके ता ओई पर ई लेप लगावे से भी ठीक होला। दमा के रोगी के प्रतिदिन सुबह शाम दूध छुहारा खूब चबा के खाए के चाहिए। इसे फेफड़ा के शक्ति मिलेला और कफ व सर्दी के प्रकोप कम होला। तो दोस्त लोग ई रहल है छुहारा के घरेलू नुस्खा। अब चलिए जानल जाओ पत्ता गोभी के औषधीय लाभ। पायरिया रोग में पत्ता गोभी के कच्चा पत्ता 50 ग्राम नित्य खाए से पायरिया व दांत के अन्य रोग में लाभ होला। बाल गिरे के समस्या में पत्ता गोभी के 50 ग्राम पत्ता प्रतिदिन खाए से गिरल होकल बाल उगावेला। घाव होके पे पत्ता गोभी के रस पिए से घाव ठीक होला। एकरा रस के आधा ग्लास 5 बार पानी मिला के पिए के चाहिए। एके रस के पट्टी बांधी परिणाम शूल होके पे करमकल्ला के रस पिए से ई रोग ठीक हो जाला। एके कप एके 3 बार पी। एकर कच्चा पत्ता भी खा सकता नहीं। एकर ताजा रस ही लाभ करेला। एक कम से कम 2 सप्ताह पी। कब्ज होके पे कमरकल्ला के कच्चा पत्ता नित्य खाए से पुराना कब्ज दूर हो जाला। शरीर में व्याप्त विजातीय पदार्थ दोषपूर्ण पदार्थ बाहर निकल आवेला। कैंसर में प्रातः खाली पेट सर्वप्रथम कम से कम आधा कप कमरकल्ला के रस नित्य पिए से कैंसर के आरंभिक लक्षण बड़ी आंत के प्रदार ठीक हो जाला। नींद के कमी पथरी और मूत्र के रुकावट में ये सब में पत्ता गोभी लाभदायक है। एकर सब्जी घी से छौंक लगा के बनावे के चाहिए। कोलाइटिस होके पे ई रोग में आंत में सूजन आ जाला। तब रोगी के भ्रम हो जाला कि हमने के भोजन नहीं के पचत। बात बात में निराश होके वाला ई रोग प्राय हो जाला। ऐसे में ऐसे निजात पावे खातिर एक ग्लास छाछ में 1/4 कप पालक के रस 1 कप कमरकल्ला के रस मिला के नित्य दिन में 2 बार पी। कुछ ही दिन में कोलाइटिस रोग ठीक हो जाए। कोलाइटिस रोग में अन्य उपचार में 2 बार उपवास रखी। तीसरा दिन 1 ग्लास पानी 3 चम्मच शहद आधा नींबू के रस मिला के पी। एक कप गाजर के रस भोजन में दही 1 कप गाजर के रस 1/4 कप पालक के रस मिला के पी और शाम के भोजन में पपीता खाएं। दोस्तों आप जानल जाए दिल के धड़कन तेज होके तक का करे के चाहिए। धड़कन असामान्य होला दिल के कमजोरी के प्रतीक होला। इसे रक्त संचार भी बढ़ जाला और घबराहट जैसन लागेला। एकर घर पर सामान्य इलाज इस प्रकार कहल जा सकेला कि 10 ग्राम अनार

0: झोला की लागेला जैसे पेट में आग लग गई होके। ये जलन खान पान पर भी निर्भर रहेला। कभी मिर्च ना खाए वाला या कम खाए वाला के ज्यादा मिर्च के भोजन खाए के पड़ जाए तभी भी ये परेशानी आ सकेला। कभी शरीर में गर्मी बढ़ जाए से भी जलन होला। पेट हमनी के शरीर के केंद्र होला। इमे कोनो ही प्रकार की खराबी ना होके के चाहिए। एकर उपचार ई प्रकार है कि पुष्कर मूल, एरंड के जड़, जौ और धमासा चारों के मोटा मोटा कूट के शीशी में भर ली आ एक ग्लास पानी में 2 चम्मच चूर्ण डाल के उबाली। जब पानी आधा कप बचे तब उतार ली और आधा सुबह व आधा शाम के पी लिया करी। ऐसे पेट के जलन दूर हो जाई। ये प्रयोग 8 दिन तक करके बंद कर दी। ये प्रयोग के साथ उचित पथ्य आहार के सेवन और अपथ्य के त्याग रखल आवश्यक है। आहार में प्रायः कच्चा दूध और पानी 1-1 कप मिला के इनमें 1 चम्मच पीसल मिश्री या चीनी डाल के फेंट लगाएं। और खाली पेट चाय या दूध की जगह पी, चाय या दूध ना पी। इतना दिन में 2 या 3 बार ई लस्सी पी। भोजन के अंत में आगरा के पेठा या पाकल केला जरूर खाएं। दोस्तों अब हम लेम रोगलो से जाए के अनुमति। त एगो प्यारा मुस्कान के साथ आपन दोस्त दीपाली के दी जाए के इजाजत। आ रखी रहुआ आपन सेहत के ख्याल। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18744।
7: ठक ठक।
8: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा।
12: एक्सक्यूज मी, आप रूड हो रही हैं
13: और आप इग्नोरेंट नहीं हो रहे? यू शुड पे अ फाइन।
12: इग्नोरेंट? देखिए सबसे पहले तो तमीज से बात कीजिए, और रही बात इग्नोरेंट होने की, तो आप मुझे मत समझाइए क्या करना है और क्या नहीं करना। कचरा बच्चे ने फेंका है, मैंने नहीं, मैं क्यों फाइन पे करूं?
13: सीरियसली आप में इतने गट्स है कि आप मुझसे इस बात पर आर्ग्यू कर रही हैं?
14: एक मिनट, क्या हुआ? आप लोग इस तरह लड़ क्यों रहे हैं?
13: इनका बच्चा मना करने पर भी बार बार प्लास्टिक रैपर्स पानी में फेंक रहा है, और ये उसे समझाने की जगह मुझसे आर्ग्यू कर रही है।
12: आई हैव अ पॉइंट कि वो बच्चा है और उसने फेंका है, सो मेरी गलती कैसे हुई? व्हाई वुड आई पे द फाइन?
14: गाइस गाइस प्लीज काम डाउन। हाय, आपका नाम क्या है?
15: सोहम।
14: हाय सोहम, आई एम नील। आप स्कूल जाते हो?
15: यस।
14: विच क्लास?
15: 5th C।
14: वाओ, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है?

0: हिंदी, क्योंकि मुझे स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है, एंड एनवायरमेंटल स्टडीज क्योंकि पता नहीं।
1: अरे वाह, आप एक स्टोरी सुनोगे?
0: स्टोरी?
2: ये क्या हो रहा है मिस्टर नील?
1: अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। देखो सोहम, बहुत सालों पहले एक राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे, मन के साफ, कभी झूठ का साथ ना देने वाले, बहुत ईमानदार। एक दिन वो अपने परिवार के साथ घूमने के लिए निकले।
3: पिताश्री, हम कहाँ जा रहे हैं?
4: हम पास वाले गांव तक मुआयना करने के लिए जा रहे हैं पुत्र।
3: पर पिताजी, मुआयना में मेरी क्या आवश्यकता?
4: तुम ये समझ लो कि हम भ्रमण के लिए जा रहे हैं।
5: पुत्र, तुम ना बहुत नटखट हो गए हो। तुम्हें छोड़कर हम इस मुआयने पर नहीं आ सकते थे, इसीलिए तुम्हें लेकर आए हैं।
3: अच्छा ठीक है, कुछ देर विश्राम कर ले, मैं बहुत थक गया हूँ।
6: अरे राजा जी, रानी जी, आप लोग यहाँ ऐसे बीच जंगल में क्यों बैठे हैं?
4: बस कुछ देर विश्राम कर रहे हैं, हमें आगे जाना है।
6: अच्छा अच्छा, तो चलिए ना, हमारी कुटिया यहीं पास ही है, वहाँ चलकर विश्राम कर लीजिए।
4: नहीं नहीं, हमें अब चलना चाहिए।
6: राजा जी, यदि आप हमारे घर चलकर थोड़ा विश्राम करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ना, मेरे भी दो छोटे बच्चे हैं, राजकुमार जी की आयु के।
3: सच? चलिए ना पिताश्री, चलते हैं, आनंद आएगा।
5: पुत्र
4: ठीक है, चलो।
3: पिताजी।
6: पुत्र, देखो कौन आया है, राजा जी, रानी जी और छोटे राजकुमार।
3: तुम हमारे दोस्त बनोगे?
6: तुम नहीं, आपको हो, वो राजकुमार है।
2: राजकुमार, हम पास वाले बाग में खेलने जा रहे हैं, आप चलेंगे हमारे साथ?
3: हाँ हाँ, चलो ना।
6: राजा जी, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या बच्चे साथ में जा सकते हैं?
4: जाइए राजकुमार।
5: रोहितेश्वर, सुनो, कोई शरारत मत करना।
3: हाँ माँ, ठीक है।
2: चल आम तोड़ के लाते हैं।
3: आम तोड़ कर लाने होते हैं? और क्या, वो भी छुप छुप कर। माली ने देख लिया ना तो पिटाई हो जाएगी। ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ये आम उस मोटे माली के है ना, पहले रोएगा और फिर जमकर हमारी पिटाई करेगा।
3: अच्छा, तो फिर हम क्यों तोड़ रहे हैं आम, ये सही नहीं है।
2: सुनो राजकुमार, तुम्हें हमारे साथ दोस्ती करनी है ना?
3: हाँ हाँ, तो चुपचाप चलो।
2: ए राजकुमार, चल पेड़ पे चढ़ जा।
3: मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता।
2: ये राजकुमार तो किसी काम का नहीं है। चल छोटे, चढ़ते हैं।
3: सुनो, तुम यही रुक के पहरेदारी करो, माली आया तो बताना।
2: ये ले, तू भी खा।
7: ए, रुको।
2: ए, माली आ गया, भागो भागो भागो।
7: तुम सबको तो मैं, चलो।
3: नहीं नहीं, हमें छोड़ दो।
7: चोरी करते हो? हाँ, अभी तुम्हारे पिताजी के पास लेके चलता हूँ।
6: अरे अरे अरे, ये क्या क्या हुआ, क्या है ये सब?
7: चोर है ये सब, चोरी कर रहे थे मेरे बाग में, आम चुरा कर खाए इन्होंने।
2: नहीं पिताजी, ये सच नहीं है।
5: रोहितेश्वर, सच सच बताओ, क्या तुम लोगों ने इस माली के बाग से आम चुराए?
3: हाँ माँ।
7: अरे राजा जी, आप, रानी जी, नहीं नहीं, राजकुमार ने नहीं चुराए।
2: पिताजी ये सही कह रहे हैं, मैंने और छोटे ने चुराए थे आम, राजकुमार तो बस नीचे ही खड़े थे।
4: क्षमा कीजिएगा, बच्चे बहुत शैतान हो गए।
7: राजा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप क्षमा मत मांगिए।
4: इन तीनों बच्चों ने पाप किया है, चोरी की है, इन तीनों को दंड दीजिए।
2: नहीं राजा जी, राजकुमार ने कुछ नहीं किया।
4: भूल तीनों ने की है, यदि चोरी इन्होंने की है तो राजकुमार ने भी तो इनका साथ दिया है।

0: ये क्या महादेव और माता पार्वती आप?
1: हाँ पुत्र, हम। मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम मेरी परीक्षा में सफल रहे।
2: हमने आपकी सच्चाई और न्याय के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसीलिए हम आपकी परीक्षा लेने आए थे।
0: मैं धन्य हो गया प्रभु, प्रभु मैं धन्य हो गया।
1: तुम पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण हो कि हर परिस्थिति में न्याय आवश्यक है। और पार्वती, इसी के साथ मैं तुम्हें जीवन का एक और रहस्य बताता हूँ। पाप केवल कर्मों से नहीं होता, सोच से और बोल से भी होता है। इसीलिए बुरा करने वाला, बुरा सोचने वाला और बुरा होते हुए देखने वाला भी पाप का और दंड का भागीदार होता है।
3: यस सोहम, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है?
4: जो करता है उसे भी और जो मना नहीं करता उसे भी पाप लगता है।
3: तुम जानते हो तुमने अभी गलत क्या किया?
4: यस अंकल, मैंने डस्टबिन में नहीं पानी में रैपर फेंका। सॉरी अंकल, सॉरी दीदी, सॉरी मम्मा।
5: दैट्स ओके। वो
3: मैम, आपका बेटा तो बहुत समझदार है, उसे बस सही डायरेक्शन की जरूरत है।
5: शी इज जस्ट वेरी इग्नोरेंट नील।
3: आप तो एजुकेटेड लगती हैं। क्या आप नहीं जानती लिटरिंग इन पब्लिक प्लेसेस एंड पोल्यूटिंग नेचुरल बॉडीज इज अ पनिशेबल ऑफेंस?
5: आई से शी शुड बी फाइंड। आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट रियलाइज।
3: देखिए, आपकी इग्नोरेंस की वजह से कितना सीन क्रिएट हो गया। एनवायरनमेंट का ध्यान रखना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट की नहीं। एंड इट्स हाई टाइम कि हम इस बात को समझें। इसके लिए गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है, तो हम क्यों नहीं?
4: सॉरी अंकल, आप मेरी मम्मा को कुछ मत कहिए, गलती मेरी थी।
5: आई एम सॉरी, ये मेरी भी गलती है कि मैंने आपको रोका नहीं। सोहम, थैंक यू मुझे रियलाइज कराने के लिए कि मैं अपनी फोन पे इतनी बिजी हो गई थी कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही भूल गई। थैंक यू।
3: अरे, आपको रियलाइज हो गया यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, और सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ।
5: मिस्टर नील।
3: यस।
5: आई एम आरती, आई एम अ सिंगल मदर, थोड़ी सेल्फ कंज्यूम्ड हूँ आजकल। आपने मुझे रियलाइज कराया एंड ऑल, थैंक यू, आई एम रियली सॉरी।
3: अरे दैट्स ओके, मैंने कहा ना इसकी जरूरत नहीं है।
5: आई मीन एक्चुअली, क्या मैं आपको कॉफी पे ले जा सकती हूँ?
3: नो, आपको इसके रिडेम्पशन की जरूरत नहीं है। एंड आई एम नॉट अ कॉफी पर्सन। मैं चलता हूँ।
5: नील, कैन आई गेट योर नंबर?
3: I don't have a number.
5: What? Neil, your address maybe? अगर फिर से ऐसे situation में पड़ गई तो?
3: That's so sweet. Actually, I'm a traveler. अगर आपको सच में कभी मुझसे मिलना हो तो come to अमरनाथ, मैं वहीं मिलूंगा।
5: अमरनाथ?
3: हाँ, वहीं मुलाकात होगी। हर हर महादेव।
6: गांधी जी के तीन बंदर तो सभी जानते हैं, बुरा ना कहो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो। बचपन से यही सीखते आए हैं। लेकिन एक और बात इंपॉर्टेंट है और वो है, बुरा होते हुए अगर देखो तो चुप मत रहो, क्योंकि वो उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि बुरा करना। बाबा, फॉर एग्जाम्पल, राह चलते अगर किसी टपोरे ने किसी लड़की का बैग छीन लिया तो बाबा उस लड़की को सहानुभूति नहीं चाहिए, उसे अपना पर्स चाहिए भाई, उसमें पैसे है, उसकी सारी चीजें हैं। या तो चोर के पीछे भाग, उसका बैग लेकर आ, या फिर पुलिस स्टेशन उसको लेकर जा, मगर किसी तरह से मदद तो कर। अगर चुपचाप देख के बिना कुछ किए घर गया तो भिड़ू सो कैसे सकेगा तू? शिव अच्छाई का साथ देना सिखाते हैं, शिव सच्चाई का साथ देना सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
11: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
10: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
11: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
10: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
12: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
13: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
12: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
13: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
12: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
13: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। पासपोर्ट सत्यापन में पैसा मांगने वाले अपर थानाध्यक्ष को किया गया निलंबित। बिहार विद्या साथी की हुई शुरुआत, अब 24 घंटे विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा। पंचदेवरी प्रखंड का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। विद्युत कटौती से परेशान लोगों ने किया बिजली विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन। और जिले में NIA की छापेमारी से मचा हड़कंप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली करने वालों को पहले ही चेताया था, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था, उसके बावजूद भी पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा था। जैसे इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी को हुई तो उन्होंने मामले की जांच करवाई और आरोप प्रमाणित होने के बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर 3000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में भोरे थाना के अपर थानाध्यक्ष SI संदीप कुमार को निलंबित कर दिया गया। पुलिस जांच में रिश्वत मांगने और नियम विरुद्ध तरीके से पासपोर्ट रिजेक्ट कराने के आरोप सही पाए गए। इस पर पुलिस अधीक्षक ने भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई की और SI संदीप कुमार को निलंबित कर दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं आम जनता ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि सभी थाना क्षेत्रों में लगातार पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर अवैध उगाही की जा रही थी, पुलिस अधीक्षक की एक्शन से अब इस पर नियंत्रण लग सकेगा। बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल विद्यालयों में बिहार विद्या साथी कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इसमें गोपालगंज जिले में कुल 18 मॉडल विद्यालय भी जुड़ गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी समीर सौरभ, जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे सहित तमाम अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में लाइव जुड़ गए थे। जिले में संबंधित मॉडल विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। बताया जा रहा है कि बिहार विद्या साथी को विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे सातों दिन इंटरैक्टिव शैक्षणिक प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। इसके माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित कठिनाइयों के समाधान के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन उपलब्ध हो सकेगा। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता एवं पसंद के अनुरूप शिक्षक से जुड़कर विषयों को समझ सकेंगे और अध्ययन के दौरान उत्पन्न प्रश्नों का समाधान भी प्राप्त कर सकेंगे। बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम का पूरा कराने तक सीमित न रखकर कॉन्सेप्ट आधारित एवं समझ परक शिक्षा उपलब्ध कराना है। आधुनिक तकनीक एवं AI आधारित टूल्स के उपयोग से विद्यार्थियों को विषयों की बेहतर समझ विकसित करने तथा कठिन अवधारणाओं को सरल तरीके से सीखने में सहायता मिलेगी। जिलाधिकारी ने बिहार विद्या साथी कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पहल शिक्षा में समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक मार्गदर्शन और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण संस्थानों तक पहुंच मिलेगी और उनकी सीखने की क्षमता को और मजबूत किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की इस पहल से विद्यालयी शिक्षा को तकनीक, नवाचार एवं आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से जोड़ने के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए जब चाहे, जहां चाहे और जिस विषय में चाहे सीखने की दिशा में नई संभावनाएं विकसित होगी। बिहार विद्या साथी राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगा। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने पंचदेवरी प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय का वास्तविक कार्यप्रणाली, अभिलेखों के संधारण, संचिकाओं के निष्पादन, आमजन से प्राप्त आवेदनों की स्थिति और पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति पर कार्य संस्कृति का जमीनी स्तर पर जायजा लिया। इस दौरान विभिन्न शाखाओं के अभिलेखों, संचिकाओं, पंजी, कर्म पुस्तिका, आवेदनों के निष्पादन की स्थिति की भी समीक्षा की। साथ ही कुछ आवेदकों से स्वयं टेलीफोन पर संपर्क कर यह जानकारी ली कि उनके द्वारा कार्यालय में दिए गए आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई है और उनके आवेदन का समाधान हुआ है अथवा अभी लंबित है। जिलाधिकारी ने सीधे आवेदकों से फीडबैक लिया। कार्यालय में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की वास्तविक स्थिति की जानकारी इससे प्राप्त हुई। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि आम जनता से जुड़े किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें, प्रत्येक आवेदन का नियमानुसार और निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करें। भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से लोग परेशान हो जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जगह जगह हो रहे अघोषित विद्युत कटौती से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है। आज इसको लेकर लोगों का गुस्सा सामने भी आया। सदर प्रखंड के जादोपुर, तिरबिरवा इत्यादि क्षेत्रों में हुई विद्युत कटौती से परेशान लोग आज बिजली विभाग के कार्यालय पर पहुंच गए, वहां विरोध प्रदर्शन किया और विभाग के अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान जनता से भी इस संदर्भ में बातचीत की गई तो लोगों ने कहा,
4: काफी जितने हम लोग आम जनता आए हुए हैं सारे लोग काफी परेशान थे। बिजली मात्र हम लोग को 8 से 10 घंटा बिजली मिले और बिजली का ये स्थिति है कि बिजली आई और चली गई, सिर्फ अपनी झलक दिखाकर चली जाती है। हम लोग का मुख्य मांग था कि हम लोग का एक कॉट आउट लगा दिया जाए, अगर जिस क्षेत्र में अगर बिजली बाधित है उसी क्षेत्र का बिजली कटित किया जाए, बाकी क्षेत्र में अब बिजली बहाल रखा जाए। उसके अलावा JEE हो या PSS वाला हो, कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। अगर उठाते भी हैं तो स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाते हैं और ना ही जो कोई जानकारी दे पाता है कि भाई बिजली कब तक आएगा। इस गर्मी में सबका बदहाल स्थिति है और बिजली विभाग में ये लोग बैठ कर एकदम AC में एकदम आराम से लोग आराम फरमा रहे हैं। देखिए ये मामला है तिरबिरवा पंचायत से पकड़े हुए जादोपुर दुखहरण पंचायत और जादोपुर सुकल पूर्वी बिशुनपुर और पश्चिमी, ये सारे करकर यानी नगर परिषद से सटे लेकर दियरा तक ये प्रॉब्लम है। और आश्वासन के तौर पर ये मिला है कि हम लोग 1 से 2 सप्ताह में ये सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। और आपके जो भी मुख्य मांगे, हमारे 5 मुख्य मांगे थी जिसमें 4 मांगों को पूर्ण रूप से मान लिया गया है और 1 मांग को अभी तक वो रखा गया है कि उस पर हम लोग सोच विचार करके फिर आप सबको अवगत कराएंगे। जी मेरा नाम इरफान अली गुड्डू हुआ।
5: मैं बादल हुआ, हम लोग तिरबिरवा पंचायत से आए हुए हैं। बिजली की बहुत काफी समस्या है यहाँ पे, ऐसा समस्या हो गया है कि अगर दिन में 24 घंटे में ये लोग 5 से 7 घंटा 8 घंटा बिजली दे रहे हैं, बाकी समय जब फोन किया जाए तो सिर्फ फॉल्ट बताते हैं लेकिन क्लियर ये भी नहीं बताते हैं लेकिन हुआ क्या है। किस अधिकारी के पास अगर फोन किया जाए तो 10 बार 20 बार 30 बार लगाते रहे, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही वो लोग बताते हैं कि किस कारण। इसी को लेकर हम लोग आज बिजली विभाग में आए थे, जीओ सर से मिले हैं लोग, हम लोग आश्वासन मिला कि 1 से 2 सप्ताह में सारे जो भी आप लोग का मांग है उसको हम लोग पूरा करेंगे।
4: बिजली विभाग से हम लोग काफी
3: नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा इलाके में आज एनआईए की छापेमारी हुई है। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, परंतु मीडिया खबरों में चल रही जानकारी के अनुसार अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के सहयोग से तुरकहा इलाके में कई जगहों पर छापेमारी की, जाँच पड़ताल की। हालांकि यह छापेमारी किस मामले को लेकर हुई है, इसको लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। टीम को इस मामले में क्या क्या बरामद हुआ, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई। एनआईए की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा प्रशासनिक स्तर से होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि जिले में इसके पहले भी एनआईए ने मानव तस्करी और कंबोडिया साइबर फ्रॉड कनेक्शन को लेकर छापेमारी की थी, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। इस बार किस मामले को लेकर यह छापेमारी हुई है, इसकी जानकारी आने वाले वक्त में प्रशासन की तरफ से आ सकती है। आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें चार लोग काफी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मामला माझा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर का बताया जा रहा है। यहां कार और एक ट्रक की जोरदार टक्कर हुई जिसमें चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को सदर हॉस्पिटल में भेजा गया। बताया जा रहा है कि चारों युवक एक कार में सवार होकर किसी काम से पटना जा रहे थे। इसी दौरान पथरा गांव के पास उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में जादोपुर बाजार निवासी करण कुमार, अरमान अली, मनीष कुमार और प्रीतम कुमार बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज स्थानीय अस्पताल में करने के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए कुछ को रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मॉडल सदर हॉस्पिटल में जब सभी घायल पहुंचे तो वहां स्ट्रेचर के अभाव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने विरोध भी किया जिसके बाद स्थानीय लोग और चिकित्सकों ने मामले को संभाला, घायलों का उपचार हुआ। बताया जा रहा है कि हंगामे के कारण सिविल सर्जन ने स्थिति को संज्ञान में लिया है और मामले में जांच कर जल्द ही आवश्यक संसाधनों की पूर्ति का आश्वासन दिया है। फिलहाल सभी घायलों का उपचार चल रहा है और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। आज जिलाधिकारी

0: कटिया का निवासी है। इस पर अपने ही पत्नी को मारपीट कर जख्मी करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज है। इसमें पीड़िता ने सास ससुर पति और अन्य परिवार के लोगों पर भी आरोप लगाया है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसी में बबलू चौहान को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी की अनुपस्थिति में पुलिस उपाधीक्षक विजय मिश्रा ने भी उपस्थित फरियादियों की समस्याओं को सुना और उसे निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। मुचका गांव थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे आरोपी रसूल मियां को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह उचका गांव के बरारी हरकेश के स्वर्गीय रहमत मियां के पुत्र हैं और इन पर पुलिस ने पहले से मामला दर्ज किया था। पकड़े गए आरोपी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। बताया जा रहा है कि पीड़ित अपने खेत में काम कर रहे थे, इसी दौरान अभियुक्तों ने वादी पर लाठी डंडा और चाकू से जानलेवा हमला किया था और उन्हें घायल कर दिया था। इसी मामले में जख्मी वादी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने स्थानीय अस्पताल से उन्हें रेफर भी किया था और फिलहाल उनकी स्थिति नियंत्रित बताई जा रही है और इसी मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है और इसमें फरार चल रहे अन्य आरोपियों को भी पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। आज सभी थानों पर गुंडा परेड का भी आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानाध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में गुंडा परेड का आयोजन कर अपराधियों को सख्त हिदायत दी है, ताकि आने वाले समय में कोई भी अपराधी जो जेल से छूटकर बाहर आए हैं वे आपराधिक घटनाओं में शामिल ना हो। इसी के लिए पुलिस गुंडा परेड करवा रही है और जेल से निकले हुए अपराधियों को थानों पर बुलाकर उन्हें सख्त हिदायत दी जा रही है। कटिया थाना की पुलिस ने 40 लीटर देशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सिरीपुर थाना क्षेत्र के धारहरा स्थित मेला के पास छापेमारी की, जहां से उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब लेकर आ रहे मोटरसाइकिल सवार को पुलिस ने पकड़ लिया। इसकी गाड़ी से 40 लीटर शराब मिली है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी और शराब को जब्त कर इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज भी कई वांछित अभियुक्तों के घर पुलिस ने इश्तेहार का तामीला किया, जहां ढोल नगाड़ों के साथ आरोपियों के घर पहुंचकर पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया और जल्द से जल्द अदालत में समर्पण करने का निर्देश भी दिया गया। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी बबन मांझी, पिता चनर मांझी, गोपालपुर थाना मोहम्मदपुर का निवासी है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इसे गिरफ्तार करने के बाद आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पासपोर्ट सत्यापन में पैसा मांगने वाले अपर थानाध्यक्ष को किया गया निलंबित। बिहार विद्या साथी की हुई शुरुआत, अब 24 घंटे विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा। पंचदेवरी प्रखंड का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। विद्युत कटौती से परेशान लोगों ने किया बिजली विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन। और जिले में एनआईए की छापेमारी से मचा हड़कंप। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही

0: हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, Glamour X 1,01,354 रूपए और X3 125R 1,10,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
5: भारतवर्ष महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ।
6: आलमपना शहजादे दारा शिको, आपके गुनाहगार ही नहीं वो काफिर भी। दारा ने खुद हिंदुओं के उपनिषदों का तर्जुमा किया है, अपनी किताब में इस्लाम और हिंदू मजहब को बराबर का दर्जा दिया है, जो कि इस्लाम की तौहीन है। इन बातों से साबित होता है कि शहजादे बुत परस्त भी हैं। और तो और, दारा तो कहते हैं कि जन्नत वही है जहां मुल्लाओं का शोर नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि दारा शुकोह को सजाए मौत देने में कोई हर्ज नहीं है।
7: काफिर दारा शुकोह पर लगाए गए तमाम इल्जामात साबित, हम शहजादे दारा शुकोह को सजाए मौत का हुक्म अदा करते हैं। उसका सर कलम हो

0: इस काफिर का चेहरा तब भी नहीं देखा था जब ये जिंदा था।
1: बदबख्त। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने भाई दारा शुकोह का सर कटवाया, उसे धुलवाया और फिर कटे हुए सर को देखकर बोला, बदबख्त यानी बदकिस्मत। नमस्कार, मैं हूं अनुपम खेर, भारतवर्ष में आपका स्वागत है। हम उस घटना के तकरीबन 400 साल बाद यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतवर्ष के लिए बदबख्त यानी बदकिस्मत कौन साबित हुआ। अगर दारा शुकोह बदबख्त बदकिस्मत साबित ना होता तो भारतवर्ष का इतिहास क्या कुछ और होता। भारतवर्ष में इस बार दारा शुकोह की कहानी, वो दारा शुकोह जिसे उसके पिता शाहजहां ने अगला बादशाह घोषित किया, अपना उत्तराधिकारी बनाया, वो दारा शुकोह जिसके एक हाथ में पवित्र कुरान थी, दूसरे हाथ में उपनिषद। वो मानता था कि हिंदू और इस्लाम धर्म की बुनियाद एक है। वो नमाज भी पढ़ता था और प्रभु नाम की अंगूठी भी पहनता था, मस्जिद भी जाता था और मंदिर में भी उसकी आस्था थी। लेकिन सत्ता की लड़ाई में वो काफिर धर्म को त्यागने वाला बताकर मार दिया गया। और तभी से यह सवाल भी बना हुआ है कि क्या भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अलग होता अगर औरंगजेब की जगह दारा शुकोह भारत का बादशाह बनता।
2: 1628 से 1658, पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां का काल। ये वो काल था जब दिल्ली में लाल किला बना। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध ताज महल बनवाया। ये वो दौर था जब शाहजहां ने अकबर की धार्मिक उदारता और मजहबों के बीच बराबरी की नीति को बदलना शुरू किया। लेकिन उसी दरबार और महल में बैठकर शाहजहां का बेटा भारत के लिए बिल्कुल अलग किस्म की राजनीति की बात कर रहा था। वो शहजादा था सुल्तान मोहम्मद दारा शुकोह। शुकोह का मतलब होता है शान शौकत, जबकि आमतौर पर दारा का नाम शिकोह समझा जाता है, जिसका मतलब होता है आतंक जुल्म। दारा शुकोह का जन्म 20 मार्च 1615 को हुआ। उसके दूसरे छोटे भाई शुजा, औरंगजेब और मुराद की तरह दारा शुकोह की परवरिश भी मुगलिया तौर तरीके से हुई, लेकिन दारा शुकोह का मिजाज अलग था। अपने नाम के ही अनुरूप दारा शुकोह बड़ी सोच वाला शहजादा था।
1: परंपराओं के मुताबिक मुगल शहजादों को बचपन से ही शिकार, तलवारबाजी, घुड़सवारी, पहलवानी से लेकर हाथियों की लड़ाई तक का प्रशिक्षण दिया जाता था। दारा शुकोह ने भी ये सब कुछ देखा और सीखा, लेकिन उसका झुकाव पढ़ाई की तरफ ज्यादा था। आगे चलकर दारा शुकोह को पढ़ाई की ऐसी लत लगी कि कभी धार्मिक पुस्तकों के ज्ञान में डूबा रहता तो कभी जामी और रूमी जैसे महान सूफी संतों के शेर और रुबाइयों में खो जाता।
3: वो पल मेरी हस्ती जब बन गया दरिया, चमक उठा हर जर्रा होके रोशन मेरा, बन के शमा जलता हूं रहे इश्क पर मैं, बस लम्हा एक बन गया सफरे उम्र मेरा।
2: दारा शुकोह के इस रुझान की वजह से ही कई सवाल शाहजहां के समय से ही पूछे जा रहे हैं। दारा शाहजहां का सबसे बड़ा और चहेता बेटा था। उसने हमेशा यही चाहा कि दारा शुकोह मुगल सल्तनत का बादशाह बने, लेकिन क्या दारा शुकोह इस लायक था? इस सवाल पर आज भी बहस होती है। लोग कहते हैं कि दारा का मन तो धर्म और अध्यात्म में रमा रहता था। वो एक सन्यासी या फकीर तो बन सकता था, लेकिन बादशाह नहीं। इन सवालों से बेफिक्र दारा शुकोह अपने लिए और शायद भारतवर्ष के लिए एक नया रास्ता खोजने में लगा था। वो इस्लाम के अलावा दूसरे धर्मों और महान चिंतकों की किताबें पढ़ रहा था। उसने गीता और उपनिषद से लेकर सूफी संतों की रचनाओं का अध्ययन किया। दारा शुकोह प्राचीन दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु से भी प्रभावित था। दारा तुर्की, यूनान और मिस्र तक से किताबें मंगवाकर पढ़ता था।
4: दारा शिकोह की तालीम का जो इंतजाम शाहजहां ने करवाया था, उसमें मीर मेदक, शेख मीर मेदक जो है वो उसके उस्ताद थे, जो कि सूफी थे और ये मियां मीर के शिष्यों में से थे। तो इस तरह से सूफीज्म की तालीम भी मिली, इसके साथ साथ बहुत से योगियों के साथ रहा वो। ये सारे के सारे बहुत ही उदारवादी थे और इंसानियत के नज़दीक ऐसा नज़रिया रखते थे जो वेदांत की फिलॉसफी और इस्लामिक सूफीज्म दोनों से मिलकर तरतीब पाया था।
2: दारा शिकोह पढ़ने लिखने में इतना रमा था कि वो कभी कभी पूरी रात किताबों के बीच गुजार देता। इसी हाल में उसका निकाह नादिरा बेगम से हुआ। शादी के एक साल बाद ही दारा एक बेटी का पिता बना, लेकिन वो जिंदा नहीं बची। कहते हैं इससे दारा को बड़ा आघात लगा। इस हादसे से उबरने के लिए दारा ने सूफी संत मियां मीर के संदेशों का सहारा लिया। मियां मीर कादरिया सिलसिले के सूफी संत थे। दारा शिकोह ने अपनी रचना सकीनतुल औलिया में मियां मीर से लाहौर में हुई मुलाकात की चर्चा की है। कहते हैं दारा शिकोह ने मियां मीर को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था।
4: मियां मीर दरअसल जो सूफियों के जो चार सिलसिले हिंदुस्तान में हैं उनमें से एक सिलसिला है कादरिया। मियां मीर कादरिया सिलसिले के एक बुजुर्ग थे और इनका जैसा कि सूफियों का होता है कि धर्मों की पाबंदियां, धर्मों की दीवारें जो हैं इनको जो है खड़ी करना वो पसंद नहीं करते, बल्कि इनके गिराने में ज़्यादा यकीन करते हैं। तो मियां मीर भी एक ऐसे ही बुज़ुर्ग थे और मियां मीर से दारा शिकोह इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी जो दूसरी किताब लिखी सकीनतुल औलिया, तो सकीनतुल औलिया में उन्होंने देखा जाए तो मियां मीर के बारे में ही ज़्यादा लिखा है।
2: इन मुलाकातों ने दारा शिकोह के मन मस्तिष्क को हमेशा के लिए बदल दिया। लाहौर में ही आगे चलकर दारा शिकोह की मुलाकात एक हिंदू सन्यासी से हुई जिसका नाम था लाल बैरागी।
5: ये आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है?
6: मूलतः दोनों में कोई अंतर नहीं होता है।
5: और ये मूर्ति पूजा का क्या उद्देश्य है?
6: मूर्ति पूजा का उद्देश्य मनुष्य के मस्तिष्क को ध्यान में लगाना होता है, परंतु जिसे आत्मा का ज्ञान हो उसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
5: फारसी ग्रंथों के अनुसार मनुष्य चार तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। लेकिन भारतीय ग्रंथों के अनुसार मनुष्य की रचना पांच तत्वों से हुई है, तो ये पांचवा तत्व क्या है?
6: आकाश, जिसका नाम श्रवण शक्ति है, जिसके जरिए मनुष्य बुरे और भले का अनुभव करता है।
2: कहा जाता है कि दारा के मन में इतने सवाल थे कि वो लगातार 9 दिन बाबा लाल बैरागी से सवाल पूछता रहा।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
10: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
12: ठक ठक
13: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं।
13: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
14: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
13: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
14: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
15: बाबालाल बैरागी के लिए कहा जाता है कि वो एक कुछ बात के लोगों ने तो लिखा है कबीरपंथी थे, मगर शायद कबीरपंथी नहीं थे, वैष्णवाइट वो थे, प्रीचर थे, और शायद इनसे जो मुंशी थे शाहजहाँ के, उनसे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उन्हीं ने मिलाया था दारा शिकोह से उनको। उन्हीं ने उनसे 60 सवाल किए और उन्हीं ने 60ों के जवाब दिए, उसको फिर बालकृष्ण ब्रह्मणी ने ट्रांसलेट किया। वो नादिर नुकात के नाम से समझी जाती है।
2: दारा एक के बाद एक धर्म चिंतन से जुड़े सवाल करता रहा, बाबा जवाब देते रहे। उसने बाबा लाल के विचारों को जाना, समझा और विश्लेषण किया। ये दारा शिकोह की दरअसल खुद की खोज थी। वो धर्म के सच्चे अर्थों को समझना चाहता था। ये सिलसिला उसने रोका नहीं। सूफी संत मियां मीर के देहांत के बाद वो 6 साल तक गुरु की तलाश करता रहा। इस खोज में उसकी भेंट मियां मीर के शिष्य मुल्ला शाह से हुई। बदख्शां के रहने वाले मुल्ला शाह भी बड़े सूफी संत माने जाते थे।
16: कौन हो तुम?
17: मैं एक फकीर हूं।
16: फकीर का नाम होता है?
17: आपसे कुछ भी छुपा नहीं है।
16: जान गया तुम्हें, आओ यहां बैठो।
2: दारा का जवाब सुनकर मुल्ला शाह मुस्कुराए। उसके पीछे भी कुछ गंभीर अर्थ थे, माने थे। इस अर्थ को समझने के लिए दारा शिकोह की ही लिखी 4 पंक्तियों को समझना जरूरी है। दारा ने लिखा,
17: हमने एक जर्रे को भी सूरत से अलग नहीं देखा। पानी का हर कण अपने आप में समंदर है। सत्य को चाहे जिस नाम से पुकारो, हर नाम खुदा के नामों में से एक है।
2: इन पंक्तियों से दारा जो कहना चाह रहा था वो वेदांत या उपनिषद का ज्ञान है। एक ईश्वर है, एक ब्रह्म है, जो सृष्टि के कण कण में मौजूद है। दारा शिकोह से 1000 साल पहले इसी ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने किया था।
18: ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रहेव नापरा, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जीव ही ब्रह्म है और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। क्या कोई घड़ा मिट्टी से अलग हो सकता है? ये जगत भी इस मिट्टी के घड़े की तरह है। कोई ब्रह्म से अलग नहीं है, हर जीव ब्रह्म है।
2: दारा ने सूफी संत मुल्ला शाह की प्रेरणा से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने का फैसला किया। कुछ ग्रंथों में यह चर्चा भी है कि इस अनुवाद के लिए दारा वाराणसी में रहा और 150 संस्कृत विद्वानों की मदद ली। उपनिषदों के इस अनुवाद को दारा ने सीरे अकबर का नाम दिया, जिसका मतलब है महान रहस्य। ये एक बहुत बड़ा कदम था। फारसी में अनुवाद के बाद ये ग्रंथ पश्चिमी देशों तक पहुंचे और भारतीय चिंतन परंपरा और विचार की गहराई को पूरी दुनिया ने जाना।
19: उपनिषदों की का पूरा ट्रांसलेशन है, सब सबसे मशहूर उपनिषदों का 52 उपनिषदों का है सर अकबर के नाम से। और इसका फिर लैटिन में तर्जुमा हुआ 1800 में, वो फारसी से हुआ। और इस तरह से वो लैटिन ट्रांसलेशन पूरे यूरोप में घूमा, क्योंकि लातीनी जबान लैटिन जबान हर एक जानता था, और उससे जो यूरोपियन फिलॉसफी पे बहुत असर हुआ।
1: दारा ने कुछ विद्वानों की सहायता से भगवत गीता का भी फारसी में अनुवाद किया। लेकिन दारा की जो रचना सबसे अद्भुत है वो है मज़्मे उल बहरैन। दारा की ये किताब हिंदू और इस्लाम धर्म में समानता खोजने की पहली बड़ी कोशिश थी।
2: मज़्मे उल बहरैन का मतलब है महासागरों का मिलन, यानी हिंदू और इस्लाम धर्म नाम के दो महान सागरों का एक होना। मज़्मे उल बहरैन पहला ऐसा ग्रंथ है जो हिंदू और इस्लाम धर्म के बुनियादी दर्शनों को जोड़कर देखता है। दारा का मानना था कि इस्लाम का एक ईश्वरवाद वेदांत दर्शन के निकट है। दारा ने उपनिषदों के ज्ञान को गहराई से जाना समझा। दारा इस्लाम और सूफी दर्शन को उपनिषद से जोड़कर देखने लगा। वो समझ गया था कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग मजहब जरूर हैं, लेकिन बुनियाद एक ही है।
3: तुम ही रहते हो काबा और सोमनाथ के मंदिर में और प्रेमी के हृदय में। तुम गुलाब हो और प्रेमी बुलबुल हो। तुम अपने ही हुस्न के चिराग पर परवाना हो।
4: वैदिक दर्शन में एक ईश्वरवाद की बड़ी अहमियत है और इसीलिए उर्दू और फारसी के बड़े राइटर्स, मतलब अमीर खुसरो से लेके गालिब तक, ये सारे ही लोग जो हैं ये मानते रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक ईश्वरवाद का तसव्वुर मौजूद है। दारा शिकोह का ईमान था इस बात में कि हिंदू भी एक ईश्वरवाद को मानते हैं, उसके अनुयायी हैं, और मुसलमान भी। इसलिए जब एक ईश्वर ने पैदा किया है, दोनों एक ही ईश्वर को मानते हैं, तो फिर इनमें अलगाव नहीं होना चाहिए।
1: दारा शिकोह के परदादा अकबर ने सुलह कुल का विचार दिया जिसमें सभी धर्मों के आदर की बात थी, लेकिन अकबर से कहीं आगे दारा की सोच थी। वो हिंदू और मुस्लिम धर्म की आध्यात्मिक एकता की बात करता था। वो कहता था कि दोनों धर्म की बुनियाद एक है। दारा अपने इस विचार से कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया।
2: उन कट्टरपंथियों में उसका अपना भाई औरंगजेब भी था। दारा के विचारों से अलग औरंगजेब की चिंता मुगल सल्तनत की बादशाहत थी। जब दारा और उसके भाई बालिग हुए तो शाहजहां ने रियासत के चार सूबों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी, शुजा को बंगाल, औरंगजेब को दक्कन और मुराद को गुजरात की सूबेदारी सौंपी गई।
1: शाहजहां दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था और यह बात जग जाहिर करने में उसने कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी। शाहजहां ने दारा को पंजाब की बड़ी जागीर दे दी थी, लेकिन दिल्ली आगरा से उसे दूर जाने नहीं दिया। शाहजहां उसे अपने दरबार में ही रखता था और अपनी गद्दी के पास एक सोने की कुर्सी दारा शिकोह के लिए लगवा दी गई। 1654 में दारा को सुल्तान बुलंद इकबाल की पदवी दे दी गई।
2: इसी बीच सल्तनत के उत्तर पश्चिमी इलाके में तब के फारस और आज के ईरान की सेना ने कंधार पर कब्जा कर लिया। कब्जे को छुड़ाने के लिए पहले औरंगजेब ने दो बार कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहा। ऐसे में दारा शिकोह ने कंधार को वापस लेने के लिए सेना का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया, जिसे शाहजहां ने मान लिया। ये फैसला बहुत हैरत में डालने वाला था, क्योंकि दारा शिकोह को सैनिक अभियान का कोई अनुभव नहीं था। उल्टे उसकी फौज में सिपाहियों के अलावा अनेक सन्यासी, फकीर और तांत्रिक भी थे, जिनके ऊटपटांग दावों को दारा शिकोह मान लेता था।
12: मेरी दुआओं के असर से 3 घंटे के अंदर दुश्मन तोप से गोले बरसाना पड़ गया। फिर आपकी फौज कंधार पे हमला करके किले पर कब्जा कर गई। वो कैसे? मैं दुआ करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। मुझे खाने के लिए मुफ्त रसद दिया जाए और 20 रुपए रोज दिए जाए।
2: दारा शिकोह के पास इससे पहले भी कंधार में कई फकीर जोगी आ चुके थे, लेकिन दारा शिकोह इस फकीर की बातों में आ गया। उसे कैंप के भीतर दुआ करने के लिए एक शांत जगह दी गई और कहा,
12: मेरी दुआओं का असर कब से दिखेगा?
2: जैसे ही तांत्रिक ने यह बात कही, अगले दिन किले पर हमले की तैयारी शुरू हो गई। दोपहर को तांत्रिक आया और फिर गायब हो गया। दिन ढलने पर वो फिर आया।
12: मिर्जा साहब सलाम। मैं किले के अंदर गया, मंगलवार को दोपहर के बाद सैनिकों को लेकर जाऊंगा। युद्ध
2: आक्रमण को फिर टाल दिया गया। अगले सोमवार को उसने एक बत्ती जलाई और कुछ उड़द के दाने छोड़े। इसके बाद तांत्रिक जोर जोर से कूदने फांदने लगा। इसके बलि का दौर चला और कहा,
12: हमला कल होगा।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
13: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
13: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
13: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
20: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
21: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
20: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
21: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
22: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
21: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
22: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
21: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
22: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
23: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
24: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
23: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
24: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
23: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
24: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
25: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
22: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
26: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
27: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
26: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
28: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
29: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
13: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27।
29: 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: अगली रात दारा शुकोह का मुख्य तोपची मुसलमान तांत्रिक के कैंप में पहुंचा, जब तांत्रिक सो रहा था।
12: शाह साहब, किले की हिफाजत 3 फरिश्ते कर रहे हैं और कल रात में मेरी उनसे जबरदस्त लड़ाई हुई और युद्ध के दरमियान मुझे कई बार आसमान में जाना पड़ा और नीचे आना पड़ा। 2 फरिश्तों को तो मैंने अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन तीसरा बहुत शातिर और खतरनाक है। मैं तो ये कहूंगा कि सोमवार तक के लिए युद्ध टाल दिया जाए, उसके बाद फिर मैं उन्हें अपने कब्जे में कर लूंगा।
2: तय समय पर दारा शुकोह का मुख्य तोपची मिर्जा जफर फिर उस तांत्रिक के पास पहुंचा।
12: मैंने तीसरे फरिश्ते पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन काबू नहीं कर सका। और उन दोनों फरिश्तों को अगर मैं आजाद नहीं किया तो वो मेरी जान ले लेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि कांधार पर युद्ध न किया जाए।
2: बहरहाल जब दारा के नेतृत्व में हमला हुआ तो मुगल सेना को खासा नुकसान उठाना पड़ा। ईरानियों की युद्ध नीति ज्यादा कारगर साबित हुई।
1: कंधार में मुगलों को सफलता नहीं मिली, इसकी एक वजह निश्चित तौर पर दारा शुकोह खुद था। दारा शुकोह कोई युद्ध कौशल नहीं दिखा पाया, उल्टे कुछ मुंह लगे सरदारों को बढ़ावा देकर शाही सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को नाराज कर दिया। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचा तो दारा का स्वागत शाहजहां ने ऐसे किया जैसे उसने एक बड़ी जंग जीत ली।
2: शाहजहां के इस दारा प्रेम ने हालात को बहुत पेचीदा बना दिया था। यही हाल शाहजहां का भी था। हालांकि औरंगजेब ने हुकूमत चलाने और सैन्य अभियानों में खुद को साबित किया था, लेकिन दारा शुकोह औरंगजेब को धूर्त और मक्कार नमाजी कहता था। जबकि औरंगजेब दारा को मजहब को छोड़ने वाला कहता था। शाहजहां के रुख ने हालात और खराब कर दिए। धीरे धीरे मुगल ओहदेदार बंटने लगे।
1: एक तरफ दारा शुकोह से शाहजहां को बेहद लगाव था तो दूसरी तरफ औरंगजेब को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। छोटी छोटी बातों पर औरंगजेब को शाहजहां झिड़क देता था।
2: शाहजहां औरंगजेब को पसंद नहीं करता था। कंधार में असफलता के बाद सिंध और मुल्तान की सूबेदारी उससे छीनकर दक्कन भेज दिया था। उस पर उपजाऊ जमीनों पर गलत तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया। एक बार तो बुरहानपुर में शाहजहां के पसंदीदा आम के पेड़ों का फल खाने के आरोप में औरंगजेब को फरमान भेजा गया।
5: ये लिखते हैं कि तुमने मुझे जहानारा के बाग के आम नहीं भेजे हैं, तो कह रहा है कि उसमें बाग आम हुए ही नहीं है, मैं कैसे भेज देता आपको, मैंने और सब जगह के भेजे, उनके बाग में अबकी नहीं हुए हैं आम। तो हर जगह बाप बेटे की आपको शाहजहां को उन पर शक ही पर शक है, या तो कोई पैदा कर रहा है या अपने आप से।
2: लेकिन हालात जल्द ही बदल गए। ₹1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ा। दरअसल शाहजहां की बीमारी की खबर जैसे ही फैली अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा था। कुछ हफ्तों की तीमारदारी से शाहजहां ठीक हुआ, लेकिन दारा के दूसरे भाई ये आरोप लगाने लगे कि शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है और दारा शिकोह उनकी बीमारी की बात कहकर वरगला रहा है। शाहजहां ने ठीक होने पर लाल किले के झरोखे से दर्शन भी दिया, लेकिन औरंगजेब और उसके दूसरे भाई की नजर गद्दी पर थी।
1: शाहजहां बादशाह था, लेकिन उसकी बीमारी ने उसके चारों बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई को तेज कर दिया। दारा के तीनों भाइयों ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और पिता शाहजहां को देखने के बहाने अपनी सेना के साथ दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। इसी बीच शाहजहां अपनी बीमारी से ठीक हुआ तो उसने आगरा जाने का फैसला किया, लेकिन आगरा जाने से पहले उसने एक बड़ी भूल कर दी। उसने मुगल ओहदेदारों के सामने यह ऐलान कर दिया कि दारा शुकोह के साथ बादशाह की तरह व्यवहार करें।
2: ये खबर मिलते ही शाहजहां के तीनों बेटों के बीच दिल्ली के तख्त के लिए होड़ शुरू हो गई। दक्षिण से औरंगजेब, गुजरात से मुराद और बंगाल से शुजा तीनों सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़े। भाइयों में औरंगजेब का पलड़ा भारी था, क्योंकि वो दक्षिण के सैन्य अभियान में अपनी एक मजबूत फौज तैयार कर चुका था। उत्तराधिकार की यह लड़ाई करीब 2 साल चली। इसमें धर्मट और सामूगढ़ की जंग सबसे बड़ी थी। उज्जैन के पास धर्मट की जंग में शाही सेना की हार हुई, जबकि आगरा से 10 मील पूर्व में सामूगढ़ नाम की जगह पर दारा ने खुद शाही सेना का नेतृत्व किया। सामूगढ़ की जंग में दारा औरंगजेब की सेना के सामने टिक नहीं पाया।

0: पास। मैं और आगे नहीं जा सकता, चाहे जो होना है हो जाए।
1: तो इस तरह औरंगजेब की ताकत बढ़ गई थी। दूसरी चीज, जंगों की बड़ी महारत थी, बड़ा तजर्बा था उसको, जबकि दारा शिकोह को भी तजर्बा था, जंगें उसने भी लड़ी हैं, जंगें जीती भी हैं उसने, लेकिन औरंगजेब के मुकाबले में वो कम पड़ जाता था, उतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी जंग की वो नहीं बना पाता था। इसलिए दारा शिकोह को उसमें शिकस्त हुई और शिकस्त खाकर उसको फरार होना पड़ा।
2: सामूगढ़ की लड़ाई भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है। इस लड़ाई ने धार्मिक कट्टरता को छोड़कर सभी धर्मों को एक मानकर राज करने की अकबर की नीति को खत्म किया, साहित्य, कला और विज्ञान के पुनरुत्थान को खत्म किया। बहरहाल इस लड़ाई में हार से हताश दारा शिकोह भाग्य के भरोसे भागता रहा, सवाल था कब तक। सामूगढ़ की हार के बाद दारा कई दिनों तक औरंगजेब की नजरों से छिपता और भागता रहा। आगरा के किले पर कुछ दिनों की घेराबंदी के बाद औरंगजेब का कब्जा हो गया, शाहजहां को नजरबंद कर लिया गया और औरंगजेब ने खुद की ताजपोशी करवाई।

0: उस रोज औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि के साथ दिल्ली के लाल किले में अपना राज्याभिषेक किया। औरंगजेब देश का वास्तविक शासक बन चुका था। दूसरी तरफ दारा भागता भागता अफगानिस्तान पहुंचा, जहां उसे और उसके बेटे सिपहर शुकोह की मलिक जीवन नाम के व्यक्ति ने पहले तो आवभगत की, फिर उन्हें पकड़ लिया।
1: हसान फरामोश, कमबख्त, खत्म कर दे, खत्म कर दे, जो तूने किया है उसे पूरा कर। लेकिन याद रखना, मेरा गुनाह सिर्फ तेरी जान बचाना था।
0: मलिक जीवन कहां मानने वाला था, भारत के भाग्य के चमकते सितारे को उस गद्दार ने औरंगजेब को सौंप दिया।
2: उस काफिर के पैरों में बेड़ियां डाल, उसे एक गंदे कपड़े पहनाओ, उसे एक मरियल से हाथी पे बैठाकर पूरी दिल्ली में घुमाओ। इस दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि इस सल्तनत का बादशाह कौन है।
3: और ऐसा ही हुआ। दारा को फटेहाल हाथी पर बिठाकर जब दिल्ली में घुमाया गया, तब बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल आए। दारा की हालत देखकर कोई फूट फूट कर रो रहा था, तो कोई उसकी मदद के लिए चीख रहा था। कुछ लोग गुस्से में आकर औरंगजेब के सैनिकों पर पत्थर और अंडे फेंकने लगे। ऐसा लग रहा था कि दारा मुगल शहजादा नहीं बल्कि उनके घर का एक सदस्य हो। रास्ते में एक भिखारी ने दारा से खैरात मांगी तो दारा ने अपनी चादर उतार कर उसे दी। दारा किसी नायक की तरह दिख रहा था। औरंगजेब को जब ये खबर लगी तो वो छल्ला उठा। दारा के साथ लोगों का समर्थन देखकर वो परेशान हो गया। उसने दारा की सजा को लेकर दरबार बुलाया, जहां दारा पर यह आरोप लगा कि वो काफिर है।
4: आलमपना, आपके हुक्म के मुताबिक हमने शहजादे दारा सुको और उनके छोटे बेटे सिपीहर सुको को ख्वासपुरा में नजरबंद कर रखा है।
5: जनाब दानिशमंद खान, दारा शुको के साथ क्या किया? उसे ग्वालियर के किले में कैद रखा जाए या फिर सजाए मौत दी जाए?
6: आलमपनाह, दारा शुको को ग्वालियर के किले में कैद करने में कोई हर्ज नहीं।
7: नहीं आलमपनाह, शहजादे दारा शुको को जिंदा रखना मुनासिब नहीं होगा। दिल्ली में बहुत लोग हैं जो उनसे हमदर्दी रखते हैं, उन्हें मुगल सल्तनत का बादशाह समझते हैं। आलमपना, शहजादे दारा शुको आपके गुनहगार हैं, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए।
5: हम नहीं चाहते कि कल को कोई ये कहे कि हमने जानबूझकर दारा शुको का कत्ल करवाया है, इसलिए उलेमा हजरात का मशवरा जरूरी है। तो जनाब पेशे इमाम, शरीयत के मुताबिक आपकी क्या सलाह है?
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
10: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
11: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी एस2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
10: और एक और खुशखबरी, एस2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। एस2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। एस2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
12: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
13: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
12: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
13: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
12: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
14: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
15: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
16: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
11: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
10: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
11: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
10: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
11: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
11: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
11: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
17: आलमपना, शहजादे दारा शुको आपके गुनाहगार ही नहीं, वो काफिर भी है। दारा ने खुद हिंदुओं के उपनिषदों का तर्जुमा किया है। उन्होंने बादशाह शाहजहां से कहकर कुंभ के मेले में हिंदुओं से लिए जाने वाले कर में छूट दिलवाई थी, और शहजादे ने अपनी किताब में इस्लाम और हिंदू मजहब को बराबर का दर्जा दिया है, जो कि इस्लाम की तौहीन है। शहजादे ने हिंदू मंदिरों को अतिया दिया है। उन्होंने कई मंदिरों की मरम्मत करवाई और नए मंदिर भी बनवाए हैं। इन बातों से साबित होता है कि शहजादे बुत परस्त भी हैं। धारा ने तो अपनी अंगूठी पर काफिरों का प्रभु शब्द लिखवाया है। और तो और, दारा तो कहते हैं कि जन्नत वही है जहां मुल्लाओं का शोर नहीं होता। आलमपना, शहजादे अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गए तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। मैं तो कहूंगा कि शहजादे दारा शुकोह को सजाए मौत देने में कोई हर्ज नहीं है।
18: काफिर दारा शुकोह पर लगाए गए तमाम इल्जामात साबित होते हैं। हम शहजादे दारा शुकोह को सजाए मौत का हुक्म अदा करते हैं। उसका सर कलम हो।
0: दारा शुकोह को पता था कि इस लड़ाई के अंत तक या तो तख्त मिलना था या ताबूत। उसने औरंगजेब से जान बख्शने की गुहार लगाई।
19: मेरे भाई और बादशाह, मुझे सल्तनत की ख्वाहिश नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह सल्तनत तुम्हारे और तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए बरकत वाला हो। मुझे मौत के घाट उतारने का इरादा गैर जरूरी है। अगर मुझे रहने के लिए एक जगह और मेरी तिमारदारी के लिए मेरी कनीजों में से कोई भी एक दे दी जाती है तो मैं सुकून से अपने घर के किसी कोने में आपके लिए दुआ करूंगा।
0: औरंगजेब की कैद में दारा और उसके बेटे सिपिहर शुकोह को यह पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दारा को शक था कि औरंगजेब के सैनिक उसे जहर देकर मार सकते हैं, इसलिए कैद में वो खुद खाना बना रहा था।
1: लकड़ियां गीली हैं, वरना इतनी देर में तो मसूर की दाल पक जाती।
20: चलो।
1: तुम यहां क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहां पर? मैं पूछा क्यों आए हो यहां? बताओ हमें क्यों आए हो यहां पर? बोलो उससे क्यों आए हो यहां पर?
20: कैदियों को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। चलो हमारे साथ। चलो
1: नहीं जाएंगे। क्या तुम हमारा कत्ल करने के इरादे से आए हो?
20: हम नहीं जानते हैं। हमें हुक्म मिला है कि आपको आपके बेटे से अलग कर दिया जाए।
1: जाकर कह दो औरंगजेब से हमें हिंदुस्तान के ताजो तक में कोई सरोकार नहीं है।
20: चलो हमारे साथ।
1: दारा कुछ नहीं चाहते। देख हमें कुछ नहीं चाहिए। जाकर कह दो औरंगजेब से।
20: जनाब हम यहाँ आपकी खबर पहुंचाने नहीं आए हैं, बादशाह का हुक्म बजाने आए हैं। अपने साहबजादे को हमारे हवाले कर दो। चलो
1: वही नजर बेग।
20: चलो हमारे साथ। पकड़ो इसे। पकड़ो।
1: हम नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे।
20: नजर बेग। चलो चलो हमारे साथ।
1: हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। छोड़िए हमें। छोड़ दीजिए हमें।

0: छोड़ दीजिए, हम नहीं जाएंगे।
1: इसके बाद दारा शिकोह का सर कलम कर दिया गया। औरंगजेब के आदेश से कटे सिर को धोकर थाली में सजाकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया ताकि उसे दारा की मौत की तसल्ली हो जाए।
2: हमने इस काफिर का चेहरा तब भी नहीं देखा था जब ये जिंदा था।
1: औरंगजेब यही नहीं रुका, उसने भारतवर्ष के दर्शन और सोच को पूरी दुनिया में प्रचारित करने वाले अपने भाई की लाश को दोबारा दिल्ली में घुमाया ताकि किसी को कोई शक।
3: त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
4: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के दो दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
3: मिजोरम विधानसभा का दो दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। दो दिन का यह सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल दो दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमरीका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगी। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरल में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
5: उथरादम सिर्फ तिरुओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उथरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पोकलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और

0: हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
2: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछी अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देशभर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेनदेन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री ओपीडी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6200

0: 0818-9359-564।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपति मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीठ की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87894-18744।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 अमर जेड पर।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
5: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: उत्तीर्ण नहीं बन सकी। हालांकि अधिकारियों ने इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग से बातचीत करने का आश्वासन दिया है।
1: अभी भी मांग कर रहे हैं एकल परीक्षा की, जिसपे अभी पूरी तरह ये सहमत नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा बीपीएससी से हम इस पे बात करेंगे कि लागू किया जाए। और जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट है, रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट, इन सब पे भी ये सहमत हुए हैं। अभ्यर्थियों की एक सलाह थी कि सिलेबस में अभी क्या है टीआरई में, कि जिस विषय के टीचर बनने हैं उस विषय से अधिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए, और जो चाइल्ड साइकोलॉजी होता है उससे कर प्रश्न पूछा जाना चाहिए अधिकतर प्रश्न। तो इस पे ये लोग सहमत हुए हैं, बात करेंगे बीपीएससी के पदाधिकारीगण से।
0: इस बीच टीआरई 4 के सिलेबस में बदलाव को लेकर शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग से छात्र संघों की मांगों पर विचार करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के सचिव ने आयोग को पत्र भेजा है। बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। कल पटना में परीक्षा नियंत्रक ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक लोकोक्ति का प्रयोग किया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया था। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन किया जाएगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री से विमर्श के बाद 15 दिनों के भीतर इस संबंध में समिति गठित करेंगे। ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन से वार्ता के बाद यह फैसला किया गया। लगभग 2 घंटे तक चली वार्ता में सहायक प्राध्यापक भर्ती परिनियम 2026 में संशोधन समेत कई मांगों पर सहमति बनी। इसके अनुसार परिनियम में आवश्यक संशोधन के बाद ही सहायक प्राध्यापक की किसी भी प्रकार की नियमित या संविदा बहाली की जाएगी। तब तक इस परिनियम को स्थगित कर दिया गया है। अब यह बहाली प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाएगी। वार्ता के बाद पटना के गर्दनीबाग में पिछले 21 दिनों से अनशन कर रहे छात्रों ने अनशन समाप्त कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AETO परीक्षा के लिए आवेदन पोर्टल दोबारा खोलेगा। आयोग इस परीक्षा का विज्ञापन फिर से जारी करेगा। नए अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा, जबकि पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। गौरतलब है कि इस वर्ष अप्रैल महीने में आयोजित इस परीक्षा में अनियमितता सामने आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। विद्यार्थियों की शैक्षणिक और संस्थागत समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रदेश में आज से विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। इन शिविरों में विद्यार्थियों को अपनी शिकायतें और सुझाव दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। प्राप्त शिकायतों का अधिकतम 30 दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर राज्य के सरकारी शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों में हर महीने के 4th मंगलवार को शिविर आयोजित किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा फॉर्म आज से 16 सितंबर तक भरे जाएंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि पंचायत चुनाव में मुखिया के पद पर आरक्षण बिहार पंचायत राज कानून की धारा 15 की उपधारा 5 के तहत लागू होगा। न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया कि चुनाव में बिहार आरक्षण कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे। न्यायालय ने कहा कि वर्ष 1991 का आरक्षण कानून मुख्य रूप से राज्य सरकार के रिन पदों और सेवाओं में आरक्षण से संबंधित है। पीठ ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव में सेवा आरक्षण से जुड़े नियम लागू करना उचित नहीं है। पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग का निर्वाचित मुखिया को पद से हटाने का आदेश भी रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने भोजपुरी फिल्म जगत से जुड़े कलाकारों से मिलकर इसके लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री कल पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 54 फिल्मों की शूटिंग के लिए सहमति दी है। श्री चौधरी ने बताया कि भोजपुरी के साथ अंगिका, मगही, बज्जिका और मैथिली भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग के लिए सरकार पूरा सहयोग देगी। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से पटना, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर और बेगूसराय समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। बक्सर से कालगांव तक दियारा क्षेत्र के कई गांव बाढ़ से घिर गए हैं। भागलपुर के खरीखंड के काजी कोराय राघोपुर मार्जिनल बांध के डी नोज के पास लगभग 110 मीटर लंबाई में कटाव हुआ। इससे राघोपुर गांव में पानी फैल गया जिससे 50,000 से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कटाव को नियंत्रित कर लिया गया है। दूसरी तरफ बेगूसराय के पछवाड़ा प्रखंड के चमटिया गांव के पास गंगा बाया नदी पर बना रिंग बांध लगभग 30 फीट की लंबाई में टूट गया। इससे रानी तीन पंचायत के 8 वार्डों में पानी तेजी से फैल रहा है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना में भी गंगा के उफान से मोकामा, मनेर और दानापुर दियारा के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
1: मोकामा में कसहा दियारा जाने वाली मुख्य सड़क का एक हिस्सा धंसने से 5,000 से अधिक आबादी का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं जंजीरा दियारा के लोग बाढ़ के पानी से घिरने के बाद घर छोड़कर मोकामा में शरण ले रहे हैं। मनेर का इस्लामगंज गांव भी चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिर गया है। दानापुर दियारा की 6 पंचायतों के दर्जनों गांव भी प्रभावित हैं और हरसामचक गांव का प्राथमिक विद्यालय बाढ़ के पानी से घिर गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: इधर सोन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी का जलस्तर भी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, सिवान और बक्सर जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 25 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन तथा वज्रपात होने के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, बक्सर एवं सिवान जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, खगड़िया, मुंगेर, नालंदा और नवादा समेत राज्य के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। श्री चौधरी जीविका सुधा बिक्री केंद्रों के आवंटन पत्र का वितरण करेंगे। साथ ही वे सुधा सखी प्रशिक्षण शिविर और महिलाओं द्वारा संचालित पशु औषधि केंद्रों का भी शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में मिथिला हस्तकला कोऑपरेटिव सोसाइटी की घोषणा की जाएगी और नवनियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मानव तस्करी से जुड़े एक मामले में गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के थावे रोड स्थित तुरकाहा गांव में छापेमारी की है। सूत्रों के अनुसार एनआईए की टीम गुजरात के अहमदाबाद में दर्ज संगठित मानव तस्करी के एक मामले में मोहम्मद कैफ नामक व्यक्ति की तलाश में पहुंची थी, हालांकि वह मौके पर नहीं मिला। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई केवाईसी कराने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब उपभोक्ता 31 अगस्त तक ई केवाईसी करा सकेंगे। पटना के रानीतालाब थाना क्षेत्र के इकबालगंज निसरपुरा गांव में सोन नदी में नहाने के दौरान डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। वहीं जिले के पुनपुन के कौड़ीचक थाना क्षेत्र में पुनपुन नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। जमुई किउल रेलखंड के देवाचक हॉल्ट के पास पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर सगे भाई बहन की मौत हो गई। शिवहर जिले में हुए तीन अलग अलग सड़क हादसों में दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है TRE4 दिसंबर या जनवरी में, BPSC की परीक्षाएं दो चरणों से कम में नहीं होगी। TRE4 के लिए 886 पूरक रिक्तियों की भेजी गई सूची। हिंदुस्तान की सुर्खी है बिहार विद्यासाथी ऐप से पढ़ाई होगी आसान, पहले चरण में 700 मॉडल स्कूलों के 3,00,000 छात्रों को 2400 घंटे मुफ्त ऑनलाइन सुविधा। आज अखबार लिखता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4,00,000 तक की सुविधा जारी रहेगी मुख्यमंत्री। प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है पटना में पुनपुन नदी के किनारे बनेगी देश की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी। दैनिक भास्कर लिखता है गयाजी से बैंकॉक के लिए 26 अक्टूबर से इंडिगो की सीधी उड़ान, शुरुआती किराया 46,608 रुपए। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं भागलपुर में गंगा का सीमांत बांध टूटा, राघोपुर में बाढ़ के हालात। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण के तहत 886 नए पद जोड़े गए, अब 33,274 पदों पर होगी नियुक्ति। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नियमावली में होगा संशोधन, राज्यपाल करेंगे उच्च स्तरीय समिति का गठन। पटना उच्च न्यायालय ने कहा पंचायत चुनाव में मुखिया पद पर आरक्षण के लिए बिहार पंचायत राज कानून ही लागू होगा। और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से पटना, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर और बेगूसराय समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
6: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
1: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
10: Now pick your phone up. Hello? Pick it up. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: थैंक यू जी। मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ गोपालगंज से।
1: कैसे हैं आप?
2: सब ठीक है जी, आप लोग कैसे हैं?
1: हम सब भी ठीक हैं
2: जी, हम लोग भी अच्छा ही है। थोड़ा धूप धूप निकला है और हमको गाना सुनना है।
1: बता दीजिए।
2: ओ बाबुल प्यारे, ये गाना है ओ बाबुल प्यारे, वे पायल की सरगम, यही गाना सुनना है।
1: और गाना सुनाना भी है किसी को?
2: जी, जितने भी अपना दोस्त साथी है रेडियो रिंगजिन का, उसको अपने मित्र दोस्त साथी लोग को सुनाना है।
1: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंगजिन 90.4 FM।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी मैं सब कुछ आपको बजरंग बाजार खटिया को बात करते हुए।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है जी। आप बताइए कौन बोल रहे हैं? भारती में आज तो मौसम अच्छा है मैम।
0: हाँ आज मौसम ठीक है,
1: है थोड़ी।
0: तो क्या हो रहा है अभी?
1: क्या हो रहा है अभी? तो हम देवरिया में है, गाँव में नहीं है, देवरिया आए हुए हैं। आज तो पहली बार में ही फोन लग गया हमारा, कॉल कर देते हैं, फरमाइश कर ही देते हैं आने का।
0: बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है?
1: गाने का बोल है पल पल दिल के पास, रविंद्र का गाना है फिल्म ब्लैक मेल।
0: तो गाना सुनाना है?
1: हाँ हाँ, जितने भी हमारे श्रोता गण है सबके लिए है और परिवार के सभी सदस्यों के लिए है।
0: जी जी, फिर
1: जो सुनाइएगा। कितना बजे तक आ जाएगा गाना?
0: आज शाम को आ जाएगा।
1: आ जाएगा, चलिए अच्छा है, सुनवा दीजिएगा।
0: फिर गाना प्ले करते हैं।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
11: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
10: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
11: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
12: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
11: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
12: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
11: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
12: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो,
18: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
17: रचना बोलते मैम,
18: क्या हाल बाजी? हमने हो गए ठीक बानी सन।
17: नाश्ता बंद हो गए मैम?
18: हाँ हाँ, हमने की नाश्ता हो गई बा, रोड़ा सब ठीक हो गए बा?
17: हाँ हमने,
18: क्या होता अभी?
17: बस लॉन्ग इंतजार होता है, सब बात हुई।
18: अच्छा चला, और इंतजार के घड़ी खत्म हो गए।
17: मनरमा मैम कहाँ बनी?
18: ठीक बानी,
17: ठीक बानी मैम। आके
18: और ही सब ठीक ठीक बाबे
17: तुम्हें तो ठीक बानो
18: तो बता दी आज कौन सा गाना सुनेगा
17: आज गाना सुनेगा हम अपना जान से ज्यादा माननी अपना भाई के
18: अच्छा और ये गाना सुना हूँ
17: हाँ रौरा सुने हम सब तो सुने जितने ऑलरेडी सुना था
18: चलिए ठीक बाबा गाना प्ले करता नहीं सुनाते रहेंगे रेडियो 90.4 FM ठीक

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
1: जी। शुक्रिया।
0: क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है, अच्छा है।
0: नाश्ता पानी हो गया है आपको?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अभी क्या हो रहा है?
1: अभी बस खेत आए हैं अपने काम में।
0: खेती किया है?
1: धान है अभी तो।
0: अच्छा धान है
1: जी।
0: चलिए बढ़िया है। तो फसल कैसी है अभी?
1: अभी बढ़िया है, निंदाई कोड़ाई काम चल रहा है।
0: अच्छा जी, चलिए सब कर चुके हैं। गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, फिल्म है शोर जी।
0: और गाना सुनाना है
1: जी? मुकेश शर्मा जी है, श्रीपाल गोयल जी है, लोकेंद्र वर्मा जी है, दिलीप बहुरा जी है, और सभी का और आप सबके लिए भी।
0: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
1: धन्यवाद।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: हेलो
9: जी, नमस्ते।
10: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमझिम 90.4 में।
9: मैं गोपाल ओझा, ग्राम का गवासा, जिला गुना से बोल रहा हूँ।
10: हाँ जी, कैसे हैं आप?
9: बढ़िया है, अच्छी है।
10: क्या हो रहा है अभी?
9: कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो घर पर ही है, कार्यक्रम सुन रहे हैं आपके।
10: तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
9: वो सुनना है दिल तुम्हारा फिल्म, कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, कुमार खान वाला है।
10: और गाना सुनाना भी है?
9: हाँ, हमारे दोस्त सुनील साहू जी है, मकसद ज्योति साहू जी है, मांगीलाल धाकड़ जी है, उनके लिए और आपके लिए।
10: जी जी, और सब ठीक है ना?
9: ठीक है, आप कैसी हो?
10: हम भी ठीक है।
9: अच्छा है,
10: फिर गाना प्ले करते हैं।
9: जी करिए।
10: सुनते रहिए रेडियो रमझिम 90.4।

0: हेलो।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 FM में।
0: मनोरमा जी या भारती जी?
1: आप भी बता दीजिए।
0: हमको तो लग रहा मनोरमा जी है।
1: नहीं, मैं भारती हूँ।
0: मेरा से मिस्टेक हो गया ना?
1: नहीं, होता है, आवाज कभी कभी मैच जाता है ना।
0: सब और कुछ बताइए।
1: और सब ठीक है, आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: हम तो बढ़िया है। आपको कब से एक बार फोन लगाया था तो अभी लगा ना तो आवाज नहीं आ रहा था, फिर अभी फोन किए तो लग गया। मौसम तो ठीक ठाक है ना उधर?
1: हाँ, मौसम ठीक है अभी।
0: कहा निकल गई? नहीं आई है
1: ये तो बात मुझे नहीं मालूम है, और ये सारी बातें तो हमारी मैनेजमेंट ही आपको बताएगी।
0: नहीं हो रहा थी तो थोड़ा मन शांत होता था, सब लोग साफ है और भारती जी भी थी तो वो भी चल गई बिना बताए किसी को।
1: नहीं,
0: अच्छा। नहीं हो दिव्या जी?
1: हाँ
0: हाँ, अभी चल गई, किसी को पता भी नहीं चल रहा। और कभी आप भी चल जाइएगा, कोई को पता नहीं चलेगा।
1: यहाँ पे तो सब आते जाते रहते हैं।
0: आते जाते रहता है। हाँ, हम लोग तो मान लीजिए पुराना लिस्टनर है, 14 साल हो गया। अब वही सोच रहे हैं हम लोग कि हम लोग भी चल जाएगा।
1: नहीं ऐसा नहीं, आप लोग हैं तो अच्छा लगता है।
0: तो जब मान लीजिए कि हम लोग का फेवरेट जो है वो लोग सब चल जा रहा है, वही थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन क्या किया, तो अभी तो लाइव चल रहा है कि रिकॉर्डिंग चल रहा है?
1: अभी तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, लाइव तो बारे में शुरू होता है ना।
0: आज तो भोजपुरी एक्सप्रेस नहीं चलेगा, चलेगा?
1: कल चला था ना, कल संडे था।
0: कल तो मैं मैसेज किया ही था। तो आज कौन सा गाना सुना दीजिएगा?
1: हाँ बताइए।
0: हम तो भाई फेवरेट नीलकमल सिंह का है।
1: उन्हीं का सुना देंगे, बताइए ना।
0: नीलकमल सिंह का टेड सॉन्ग कोई भी चला दीजिएगा।
1: नीलकमल कोई भी टेड सॉन्ग तो गाना सुनाना भी है।
0: हाँ, वो हमारा दुलारुआ हरेंद्र जी है। तो पहचानते हैं उनको, तो वही बोल रहे हैं कि जा जा पलट के देखा ना। कौन कौन है? जाओ पलट के देखा ना, नीलकमल सिंह का है ना। वही वाला बजा दीजिएगा। और आप है, आप है, हम है, पूरा फैमिली है, सब है।
1: गाना करेंगे, सुनते रहिए रेडियो झिमझिम 90.4 FM।
0: ये 5 बजे चलेगा ना? आज चलेगा की कल?
1: आज ही, आज या फिर कल, मतलब दोनों दिन में चल ही जाएगा।
0: चलिए ठीक है,
1: ठीक है फिर।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
10: Hello. जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जिम 90.4 FM में।
12: गुड मॉर्निंग दीदी।
13: गुड मॉर्निंग,
12: क्या हाल है?
13: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
12: मेरा भी ठीक है।
13: क्या
12: हुआ? अभी तो फोन लगा रहे सर, उस समय लगा रहे, मोबाइल में बैलेंस ही नहीं था।
13: लेट से रिचार्ज हुआ है।
12: आज चलाखी किए हैं उसी लगाए फोन, पे नहीं लगता है। अभी कैसा बतिया करेंगे, जब तुरंत किए तो रिंग करने लगा। और सर बताइए।
13: और सब ठीक है?
12: पूजा जो है कि नहीं, लास्ट हमारी है तो
13: पूजा हुआ है, करके आए
12: हेलो। और कल करिश्मा को गाना नहीं
13: बजा, गुस्सा है, डिलीट कर दिए सारा।
12: तो वो खिसिया गई थी, गुस्सा आ गई थी, बोले कि छोड़ दे रहे हैं, बजेगा तो
13: बोले नहीं कि हम बजाने जा रहे हैं, तब तक आप पूरा
12: नहीं, तो बोल रहे थे कि आप ही बताइए, 2 बजे के मैसेज किया, 2:30 बजे के, और 1 घंटा आधा घंटा वेट करके बजाना चाहिए, तो क्या 2-2 घंटे वेट कर रहे हैं?
13: क्या ही कीजिएगा, इतना सारा ये करने वाले हैं लोग, और मैसेज सुनना है।
12: अंकुश राजा के आवाज में रक्षाबंधन सॉन्ग, 1 घंटा बता दीजिए बहनी, तो कब न भूलाए
13: गाना
12: सुना के बाद। आपको मनोरमा दीदी को, सोनी दीदी को, डायरेक्टर सर को, पूरा रेडियो रिमझिम लोग को सुनाना है, करिश्मा जी को सुनाना है।
13: तो गाना प्ले करते हैं
12: जी। आज तो 1 हफ्ता मेरा कम्प्लीट हुआ है, तो बजेगा ना गाना मेरा? ठीक है, चलिए
13: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो,
1: स्वागत है आपका रेडियो रिंग
0: भारती जी सर नाम।
1: हेलो
0: हेलो,
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, उस समय से इंतजार करते कर फोन भी लगा तो फिर क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं, बस यही कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बैठ के
0: दोनों आदमी। मिली जुली सरकार चल रहा है?
1: नहीं, अभी तो मैं कर रही हूँ, इसके बाद ये करेंगी।
0: चलिए, आज तो बात उनसे करना था लेकिन चलिए।
1: हेलो
0: हेलो
1: जी,
0: मनोरमा जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: चलिए ठीक है
1: जी जी।
0: और सब सुनाइए।
1: और सब बढ़िया, खाना वाना हो गया आपका?
0: खाना हम कॉल करके ही खाना खाते हैं। 12 बजे कॉल हुए, 1 बजे कॉल हुए, कॉल करेंगे इसके बाद खाना खाते हैं। आज के दिन आज छुट्टी रहती है ना हमारी?
1: अच्छा,
0: आज हमारी छुट्टी रहती है, आज फ्री टाइम रहते हैं, इसलिए मैं अभी फोन लगाया, इससे पहले नहीं लगाया था, लग भी गया। तो आज एक फरमाइश है, बताऊं?
1: जी बिल्कुल।
0: खुशबू सिंह की आवाज में है
1: जी।
0: पूछे जानी घूमता उठाइए बलम जी, दी ही कुछ और चीना मुंह दिखाइए बलम जी। अगर कहेंगे तो गुनगुना के भी सुना सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: पूछे जानी घूमता उठाइए बलम जी, दी ही कुछ और चीना मुंह दिखाइए बलम जी। सुना दीजिए।
1: जी जी, आप बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन
0: गाते तो है लेकिन आप लोग गाने ही नहीं देते हैं।
1: अच्छा, हम लोग गाने नहीं देते
0: हैं। तो भारती जी कभी गवाती है नहीं है? नो, खुद को गाती है ना, हमें गाने देती है।
1: लेकिन हम तो आपको गवाते हैं क्योंकि हम बहुत बार सुने, अच्छा लगता है।
0: हाँ, तो गवाना भी चाहिए।
1: अच्छा, आपकी जब जब रिकॉर्ड कराइएगा ना, गा के सुनाइएगा मुझे। ऐसे में ऐसे रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे जब तक आप गाइए।
0: करना ही मत। हाँ, करना ही मत। चलिए ठीक है, ठीक है। तब
1: डेडिकेट नहीं बताइए।
0: आप ही लोगों को रहेगा और जितने हमारे नाम से जानने वाले हैं सबको। मेरा नाम धनेश कुमार मित्रा, दिल्ली से।
1: अभी पूछ, आपका नाम क्या है?
0: तो मैं बता दिया पहले ही।
1: रेडियो रिंग में कॉल किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के HD 90.2 FM में।
8: नमस्ते दीदी।
7: नमस्ते,
8: क्या हाल बा?
7: हाल तो ठीक बार हुआ, बताए रहो कैसे बानी?
8: हाँ ठीक बनी। खाना वाना हो गल बा?
7: हाँ खाना हो गल बा।
8: क्या बन मनोरमा दीदी?
7: बानी होने अपन काम करते नहीं।
8: अच्छा ठीक है बा। हमने कहा कि ना लगे का तो फोन रिचार्ज खत्म हो गया था मोबाइल में।
7: हाँ हाँ, रिचार्ज खत्म रहा है, सर से बोल के रिचार्ज करवाई है।
8: वैसे तो रात नहीं है फोन। गाना सुनने के बाद बजा दी नीलकमल की आवाज में बजा दी।
7: गाना के बोल बता दी,
8: रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन याद आवे बहिनी के, रक्षाबंधन के।
7: और
8: गाना सबसे पहले रहुआ के मनोरमा दीदी के, सोनी दीदी के, जितना सुनते हैं लोग वहाँ लोग के, और गणेश भी सुनिहान और हम सुने हाँ मनीष भी सुनिहान।
7: ठीक बाबा, फिर गाना प्ले करने सुनत रही रेडियो रंजीम 90.2।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते
1: विकास कुमार हिंतापुर
0: जी, क्या हालचाल है?
1: आज का हालचाल बहुत खराब है।
0: क्या हो गया?
1: आज जैसे वो कंपनी में ड्रिल कर रहे थे, हम ड्रिल मशीन चला रहे थे, वो जो फिक्स वाला ड्रिल में मशीन नहीं होता है, तो हम ड्रिल कर रहे थे, तो दस्ताना जो क्या हुआ कि फंस गया ड्रिल में। मैं तो सोचा कि मेरा उंगली टूट गया, एक बंदे ने आकर के बंद कर दिया।
0: आपको कुछ नहीं ना हुआ?
1: क्या बताया हम मैडम, आज का यात्रा मालूम ना किसका मुंह देख लिए, सुबह सुबह सकल देख लिए।
0: अच्छा आप ठीक है ना?
1: हाँ हम ठीक है, अभी दिखाएंगे इसको, शाम को जाएंगे तो डॉक्टर।
0: अच्छा मुड़ उड़ गया है क्या?
1: मुड़ा नहीं है, दिक्कत कर रहा है, दर्द कर रहा है।
0: अच्छा खिंचाव पड़ गया है लग रहा है।
1: हाँ वो दस्ताने पूरा खींच गया ना।
0: पर मनाइए कि टाइम से कोई आके बंद कर दिया।
1: पासे में था एक मिस्त्री ने बंद कर दिया, वो देख लिया ना कि दस्ताना फंस गया है, उसको बंद कर दिया आकर के मशीन को।
0: थोड़ा ध्यान रखिएगा।
1: आप बताइए आप कैसे हैं मैम?
0: हम सब भी ठीक हैं।
1: अच्छा और सोनी मैम?
0: सोनी मैम भी ठीक हैं।
1: सोनी मैम से बात नहीं होता है। क्या उनका दूसरा प्रोग्राम चल रहा है क्या?
0: नहीं तो।
1: अच्छा
0: अभी क्या कर रहे हैं?
1: अभी तो काम वाम हो रहा है, कल निकल जाएंगे घर।
0: कहीं काम कर रहे हैं? कहीं काम कर रहे हैं
1: जैसे कल निकल जाएंगे अपने गाँव गोपाल में?
0: नहीं गाँव तो निकल जाइएगा, मतलब वो उंगली ये हुआ है मुड़ा हुआ है, फिर वैसे ही काम कर रहे हैं।
1: नहीं ऐसे बैठे हैं हम कंपनी में।
0: अच्छा
1: सुपरवाइजर ने बोल दिया कि बैठे रहो आराम से, शाम को 5:30 बजे चला जाना। मालिक भी बोल दिया आकर के, मालिक भी बोला करके देख लिया ऑफिस में, बोला कि बेटा तू एक काम कर, तू बैठे रह, तू कुछ नहीं कुछ ना काम करो, तू बैठे रहो 5:30 बजे तू जा करके दिखा लेना, अच्छा लंच में चला जा। तो लंच में देखते हैं मैम, लंच में चला जाते हैं दिखाते हैं।
0: हाँ, लंच में ही चलते हैं।
1: लंच में निकल जाते हैं, दिखा लेते हैं
0: और दिखा के उनसे सब रेडी करके कल निकल जाइए।
1: हाँ दवा ववा दे देगा, मलहम वलहम दे देगा, गर्म पट्टी दे देगा, वो सेट हो जाएगा। क्या करिएगा मैम, बहुत जीवन में बहुत पेट के लिए बहुत दुख है ना।
0: जीवन में कष्ट भी है सुख भी है दोनों है।
1: हाँ क्या से क्या करना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ करके 1200 किलोमीटर छोड़ छाड़ के आना पड़ता है, क्या करिएगा।
0: चलिए कोई बात नहीं,
1: चलिए मेरा भी अंदर शौक है कि एक बार विदेश हम भी चले जाएं, घूम करके आ जाए, बस एक सफर दो सफर घूम करके चले जाएंगे।
0: हाँ तो शौक है तो पूरा कर ही लेना चाहिए।
1: पासपोर्ट बन गया है, अभी पासपोर्ट को कहीं लगाएंगे, लगा करके दुबई या नहीं तो सऊदीया में जाएंगे।
0: चलिए बढ़िया ही। तो
1: आज तो मैम गमाला पूजा है ना वो माता जी का।
0: हाँ हाँ
1: आज मेरे गांव में भी है, मेरी मम्मी बोल रही कि बेटा आज वो माता जी के जा रहे हैं, माता जी के पास आज पूजा है।
0: कढ़ाई चढ़ाने जाते हैं लोग, पूड़ी वगैरह बन।

0: वही छिड़ते हैं।
1: हाँ पूड़ी वगैरह बनता है वो सब, फिर वो भी बनता है वो एक सादा वाला खीर नहीं होता है, वो मिट्टी के बर्तन में बनता है वही।
0: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
1: आज हमको गाना सुनना है वो वाला, दिल की जो मानो तो जग रुक जाए, जग की जो मानो तो जान चल जाए, यही वाली मैडम।
0: अच्छा, और गाना सुनाना भी है।
1: तो पहले आपको सुनवाना है। आज जितना रेडियो रेमियम सुनने वाला है सबको।
0: जी, तो रखिए, अपना ख्याल रखिएगा।
1: जी बिल्कुल। अच्छा जाते जाते टाइम हो गया था।
0: हाँ,
1: अच्छा
0: फिर
1: चलिए, अब एक ही बार बुधवार को बात होगा जब तक मैं घर चला जाऊंगा।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18-744।
9: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03 62042434-03।
12: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
13: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
12: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
14: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो,
17: नमस्कार।
16: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। हाँ, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत दूर मोबाइल रख के बात कर रहे हैं।
17: नहीं मैम, आवाज़ जा रहा है।
16: हेलो,
17: जी मैं बात जा रहा है।
16: हाँ अभी आ रहा है।
17: नाश्ता पानी
16: हो गया? नाश्ता पानी हो गया आपका? हो गया है? क्योंकि रिचार्ज थोड़ा नहीं था, खत्म हो गया था, तो सर अभी बोल के
17: हम बहुत पीछे हो गए बहुत पीछे हो गए ना, ऐसा नहीं बनेगा फरवरी?
16: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पीछे नहीं है, ठीक है।
17: अच्छा, पूरा तो नहीं है ना?
16: नहीं पूरा तो नहीं आ रहा।
17: अच्छा मैम, चलिए तो और तो वही
16: और सब बढ़िया है,
17: हमको पहचानते हैं।
16: हाँ सर, तो
17: बहुत बहुत धन्यवाद पहचानने के लिए। मैम कहीं भी रहे, रेडियो को सुनते हैं, हम करते रहते हैं और सर्वाइव सुनते रहते हैं, और अपने अभी तो छात्र आए हैं तो
16: छपरा में, मतलब कुछ काम?
17: हाँ मतलब कुछ काम ही शहर में है, तो देखिए किसी में टाइम निकल के आपसे बात कर ले। मतलब
16: बता दीजिए,
17: आज मुझे गाना सुना, ये गाना का नाम है इसका ही बना।
16: कौन सा?
17: इसका ही बना।
16: नहीं सुना, एक बार और।
17: गाना का नाम यही है, है खुदा जब बना तो उसका ही बना, ऐसा गाना है यही वाला। सभी आज के सभी दोस्तों को आज के जो नया ऑनलाइन कर देना है गाना का, उतना नहीं मतलब इसके आज नाइन का गाना नहीं है।
16: बहुत शोर हो रहा है पीछे आपके,
17: इधर बराकी का पूजा कर रहा ना।
16: अच्छा हाँ हाँ,
17: आज कुछ है ना आप लोगों का इसलिए एक और बजेगा
16: कि आपको आज नहीं तो कल बजने लगेगा।
17: और वो फ्राइडे वाला रिपीट नहीं करता है?
16: नहीं, फ्राइडे वाला नहीं रिपीट नहीं होता है,
17: इसलिए उस दिन मेरा फाइल किया हुआ था एक
16: बजा पर रिपीट नहीं हुआ।
17: हाँ हाँ बजा है लेकिन रिपीट नहीं हुआ। चलिए तो चलते चलते धन्यवाद बोलेंगे और ये बोलेंगे आइए
16: ये तो थे आज फर्स्ट पहली बार में ही आपका कल पूरा कर दिए थे।
17: कल नहीं कल तो
16: हाँ, और दिन भी तो बोलते हैं तो करते हैं, आपका पहले बज जाता है
17: मतलब आज मेरा एक सप्ताह हो गया ना इसलिए बोले।
16: कोई बात नहीं आइए बजेगा आपका भी
17: आज मस्त जोड़ते हैं लेकिन भाई का फंड भाई का फंड आज मिलते हैं उसका एक कमेंट।
16: ओके जी।

0: हेलो मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
0: जी साथ में आपको भी स्वागत है। गाना सुनो आई हम।
1: बता दीजिए कौन सा।
0: और आने से उसको आई बाहर बड़ी मदानी है।
1: और गाना सुनाओ के बाद।
0: गाना सुनाओ के बाद ये पहले ना, पहले पहले रेडियो को सुनने वाले गाने पहले उन लोग, बाद में आपको।
1: अच्छा,
0: बाद में आपको और आपके बाद कोनी जी को यही गाना बताती हूँ की आपको गाना उठा वही पर सुन लेती है गाना। आप खुद गाना बजाते हैं तो आपको कौन में क्या जरूरत है।
1: क्योंकि हम खुद ही सुन लेते हैं।
0: सुन लेते हैं लोग को सारे आदमी कहते हैं मैडम आप पलाने को पलाने
1: वाले
0: ये नहीं जानते हैं कि लोग पहले मैडम ही सुनते हैं।
1: सही बात है, पहले हम सुनते हैं।
0: कौन क्या जरूरत है। जितने रेडियो प्रेमी है लोगों की आवाज उठाए वो लोग सुने है ना, हमारा रेडियो जी पकड़े है ना, सबको अच्छा लगे तब जो है भारती जी को स्वागत किया जाए गाना सुनाने के लिए। ठीक है मैडम,
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: सुबह।
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
2: भरोसे वाले से लेंगे,
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करे 85070-32042 पे।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
9: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
11: Now pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
14: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजे 90.4 FM में। नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे?
16: अच्छा है,
15: क्या हो रहा है आपके?
16: अभी से अच्छा, फोन लगा 12 बज रहे थे।
15: इतना टाइम लग गया?
16: बड़ा टाइम, सबको कॉल किया। और समाचार बताइए कैसे है?
15: और समाचार ठीक है, आप सब ठीक है ना?
16: जी हम लोग ठीक है।
15: तो आज बता दीजिए फरमाइश अपनी।
16: फरमाइश राष्ट्रीय
15: गाने के बोल
16: बड़ा।
15: अच्छा, और सॉन्ग सुनाना भी है?
16: जी आपको जितना रेडियो है जितना सोता दो सुनकर सबके साथ।
15: चलिए ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
16: जी मैडम, नमस्ते।

0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: थैंक यू मैम। भारती मैम बोल रही है। एक बार तो पूरा कॉल रिंग होके कट गया मैम, ऐसा क्यों?
0: कुछ काम कर रहे थे।
1: क्या सर, क्या हाल चाल है मैम?
0: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
1: हम लोग तो अच्छे हैं, आप अच्छे हैं ना?
0: हेलो,
1: योर वॉइस योर चॉइस चलेगा ना?
0: जी बिल्कुल चलेगा।
1: आज हमको सॉन्ग सुना दीजिए, देखो दिन मूवी से, जब न माना दिल दीवाना कलम उठा के जाने जाने।
0: कौन सी मूवी है?
1: देखो दी।
0: अच्छा,
1: काजल का
0: गाना कौन सा बोले हैं?
1: जब न माना दिल दीवाना कलम उठा के जाने जाना, खत मैंने तेरे नाम लिखा। सुनाना है सबसे पहले आपको, सोनी मैम को, तमरान रशीद को, राघव जी को, दिलीप भाई को, अरी को, असलम भाई को, किरण भाई को, और संसाद भाई को, बुखरा नंदी को, और जो भी रेडियो इंजिन जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
0: जी बिल्कुल।
1: चलिए मैम, जुम्मा मुबारक मेरे तरफ से सभी को बोल दीजिए।
0: बिल्कुल।
1: ओके मैम, सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी दीदी, नमस्ते।
11: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 92.4 FM में।
12: जी थैंक यू। कैसी हैं?
11: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
12: मैं भी अच्छी हूँ। वैसे आप बोल कौन थी हैं?
11: पहचानिए कौन?
12: भारती दी।
11: हाँ,
12: तब और सब कैसा है?
11: और सब बढ़िया है, आप सब कैसे हैं?
12: हम भी बढ़िया है। तब खाना हो गया है? जी अच्छा है। मुझे सॉन्ग सुनना है।
11: बताइए कौन सा?
12: बात कुछ समझ नाई, कमी क्या हमें पाई, एक तरफ आए मोहब्बत हमने सिर्फ निभाई, जाम चाहत का देकर जहर नफरत का पिला दिया, कभी बंधन जुड़ा लिया कभी दामन छुड़ा लिया।
11: यही वाला सॉन्ग सुनना जी। और गाना सुनाना है
12: जी आपको, सोनू सर को, सोनी दीदी को और जितने सुनने वाले हो उन सभी को। वैसे दीदी, मेरा ना बर्थडे था, ठीक है?
11: हाँ।
12: तो सोचे थे आने के के लिए घूमने रेडी और रिमझिम में लेकिन जा नहीं सके।
11: क्यों, क्या हो गया था?
12: टाइम नहीं मिला ना।
11: आप सुनी ना बोल रही हैं?
12: हाँ पहचान गई क्या दीदी?
11: हाँ
12: कोई दोस्त रहता लो तब ना साथ में जाने में थोड़ा।
11: अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ तो हम लोग है ही
12: जी।
11: तो फिर गाना सुन प्ले करते हैं
12: जी। थैंक यू,
11: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं गोपाल बिहार रेड्डी छोटा संग्राम सोना मंडिया पूर्वी चंपारण बिहार से संजय कुमार सा।
0: जी कैसे हैं आप?
1: जी मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। कहीं ना कि आप बारिश रिमझिम रिमझिम हो रही है। हम लोग रेल में अपना है पूछे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। मौसम ठंडा है, सुहाना है।
0: चलिए बढ़िया है। तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: आज जब बारिश हो रहा है तो बारिश वाला सुना दीजिए। बरसा पानी इसी के ज्यादा जोर से नहीं बारिश हो रहा है।
0: अच्छा।
1: जी फुहार चल रहा है।
0: पर गाना सुनाना भी है किसी
1: को? सबसे पहले आपको, आज आपको रेडियो संपन्न परिवार को दोस्त में हो गया से खाने से मोहम्मद साबिर जी राम लक्ष्मण को सुहा नरे सोहनी दीपक दास उदय बहन ठाकरे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से राजिंदर जब भारती संत लाल गौतम उत्तर प्रदेश माउंट से हमारे नाम से ज्यादा पहचान तमाम दोस्तों और विशेष करके रेडियो रिमझिम से मोहब्बत करने वाला संपूर्ण परिवार को खास करके मोहम्मद लाल अंसारी मधुबनिया था विशेष करके उनको सुनाते हुए राजधर मुखिया लगा हमारे नाम से जाना पहचान तमाम दोस्तों को सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार
0: नमस्कार। रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856।

0: ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289225567 या 9774-86164।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रामझीम 90.4 FM पे और समय 9:30 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें आप तो पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश हम पूरी कर सकें। और आप लोग तो जानते हैं कि यह कार्यक्रम स्पेशली पुराने गाने के लिए ही चलते हैं, तो आप पुराने गाने पसंद करते हैं तो अभी फरमाइए और हम कुछ ही समय में आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज हम लेते हैं जो 2-4 मिनट पहले मैसेज पहुंचा हुआ है, उस मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जो भी श्रोतागण 10 मिनट पहले मैसेज कर दिए हैं वो अपने मैसेज को अपडेट कर दे, फिर से रीसेंड कर दे ताकि हमें पता चले कि आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और पहला मैसेज पहुंचा हुआ है बुलेट चौधरी जी 3 फेड़िया से किए हुए हैं और गाने की फरमाइश करते हैं पिया जी की मुस्की हमरा लागे लबी चूड़ रह सके। तो चलिए आपका फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है, फिलहाल स्वागत है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है गाना पतली कमर लंबे बाल सुरेश शाह जी त्रिविरवा से किए हुए, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है मुझे सॉन्ग सुना दें, तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। मधु सरिया से राजू जी जुड़े हुए हैं और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हेलो रेडियो रामझीम नमस्कार सोनू भाई सभी दोस्तों को नमस्कार बोलिएगा और मैं राजेश प्रसाद सूरत गुजरात से और आपको सुन रहा हूँ। आज मैं भी एक गाने के साथ आपके इस कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ। गाने का बोल ओ फिड़की वाली तू कल फिर आना, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, फिलहाल स्वागत है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो फिलहाल आप कौन हैं अपना तो परिचय दें फिर आपकी फरमाइश हम पूरी करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि मैं अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान माझा सोनम जी से निवेदन है कि मेरा भी गाना बजा दीजिए, बिल्कुल बजाने की कोशिश रहेगा और मेरे नाम को ही चेंज आप क्यों कर रहे हैं। और चलिए बने रहे हमारे साथ, पहले गाने के फरमाइश हम बुलेट जी की पूरी करते हैं और इन्हीं के गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं और सुनते हैं पिया जी के मुस्की हमरा लागे लबी जोड़ रह सकी।

रेडियो रेंजिम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और आप भी जुड़ना चाहते हैं और आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप पुराने गाने के फरमाइश करेंगे लो आप लोग। और अभी हमसे भी पूरे स्पीड धोन गाने इंजॉय तो कर लिए, लेकिन कई लोग कह रहे होंगे कि कहते हैं कि पुराने गाने के फरमाइश करें, आप जब नए गाने के फरमाइश करते हैं ना तो आप प्ले कर देते हैं। तो आप लोग से तो हम हर रोज़ विनती करते ही हैं, आप लोग नए गाने के लेकर आगे ही खड़े रहते हैं। तो चलिए, आपकी फरमाइश हम पूरी कर ही दिए हैं, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और बुलेट जी, आगे से ध्यान रखिएगा कि गाने के फरमाइश जब भी करें तो पुराने गाने की ही फरमाइश करें, ताकि और किसी को बुरा ना लगे, और हम जब निवेदन करते हैं तो थोड़ा सा समझें। आगे मैसेज कुछ पहुंचे हुए हैं तो शामिल करेंगे। आगे लिखा गया है कि सोनो भाई नमस्कार, और सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं दिल्ली राम दिल्ली से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हर हर महादेव भाई कैसे हैं, ठीक है, सभी दोस्त कैसे हैं, ठीक है, और सुपर गाने वा भाई। सबिता चौहान भोजछपरा से मैसेज करती हैं, सुपर तो गाने हैं ही, लेकिन ये भोजपुरी एक्सप्रेस के लिए गाने थे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हेलो हाय, कैसे हैं आप सर, सॉन्ग पाँव में पायल पहन के मैं घुंघरू डोला रे डोला। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है, मनीषा फ्रॉम अमाम अजम से की है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि वाह पिया जी के मुस्की सुपर सॉन्ग, हेलो नमस्ते भैया कैसे हैं, मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हैं, अगली गाने के फरमाइश हम सुरेश जी की करते हैं पूरी, और इनके गाने के फरमाइश है पतली कमर लंबे बाल हाय रे तेरी उम्र 16 साल।

कमल के शाम रेडियो रंजी नेट पर 4 FM सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने पसंद के गाने के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है और कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और जो भी सुरतागढ़ मैसेज किए हुए हैं और यहाँ आपका स्थान मिला है, वहीं पे स्थान को बनाए रखें ताकि आपकी फरमाइश हम एक एक करके पूरी करें तो आपका भी नंबर आ सके। इधर उधर करेंगे तो आपकी गाने नहीं बज पाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुपर सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मीठी मीठी यादें पलकों पे सजा लेना, एक साथ गुजरे पल को दिल में बसा लेना, नज़र ना आओ हकीकत में अगर मुस्कुरा कर मुझे सपनों में बुला लेना। हेलो हाय, क्या हाल है सोनू भैया? गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से, और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं और आगे मैसेज अगले गाने की फरमाइश पूरी करते हैं। मैसेज करते हैं हमारे श्रोतागण, इनका नाम है राजू जी, और गाने की फरमाइश किए हुए हैं, टूटा जो दिल किसी का खैरत की बात क्या। तो चलिए आपके भी गाने प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: Excuse me, boss. You have a text message.

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे। आगे मिसेज पहुंचा हुआ है, और इस मिसेज को पहुंचाए हुए हैं सूरत गुजरात से रजेश जी, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, और गाने का बोल देते हैं वो फिड़की वाली तू कल फिर आना। ये गाना सबसे पहले आपको और सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को और मैडम जी के साथ सुनना चाहता हूँ, लिखे हुए हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने रेडियो रेमझिम 94.4 FM।

टुडे रेमझिम 90.4 FM पे इस प्यारे से सॉन्ग को सुन रहे थे। काफ़ी प्यारा सॉन्ग रहा और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई गाना बजाने के लिए। चलिए आपको धन्यवाद है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, उनकी आवाज़ सुनने को बेकरार रहते हैं, शायद इसी को दुनिया में प्यार कहते हैं। काटने से भी ना कटे वक्त, उसी को मोहब्बत में इंतज़ार कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप जी, इसी को मोहब्बत में इंतज़ार कहते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अजय जी मैसेज रिपीट कर रहे हैं, तो आप जहां हैं वहीं पे रहें, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे मैसेज लिखा गया है कि मेरी सांसों की डोर बस दो ही ख्वाहिश पर टिकी है, मेरी सांसों की डोर बस वही दो ख्वाहिशों पर टिकी है, सांस चले तो तुम साथ हो और रुके तो तुम पास हो। प्यारा सा लाइन। और आगे बढ़ते हैं, अगली गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। और आगे गाने के फरमाइश तो पहुंचा हुआ है एक हमारे श्रोतागण किए हुए हैं, लेकिन अपना नाम पता कुछ नहीं बताए हुए कि कौन से गाने सुनने हैं, तो ऐसे गाने के फरमाइश हम पूरी नहीं करेंगे। आगे मैसेज और गाने के फरमाइश, पाँव में पायल पहन के मैं घुंघरू डोला रे डोला। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। मनीषा फ्रॉम मामा मौजम से इस मैसेज को पहुँचाई है, सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझम 90.4 FM पर।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
9: रेडियो रंजीम 90.4 FM सुनने आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और ठीक से नाम भी नहीं बताते हैं लोग, जिसमें थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत होती है। चाहे जो भी कार्यक्रम चले, आप जब भी गाने के फरमाइश करें तो ठीक से नाम पहले

चुन ले फिर गाने की फरमाइश करें। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, अजय कुमार जी किए हुए हैं गणेश स्थान माझा से और गाने की फरमाइश करते हैं। देवी जी की आवाज़ में हम न रहब सैया दिल्ली शहरिया में, हम के ले चला गऊँ जवरिया में। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं। अजय जी आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ। रेडियो एम जी एम 94.4 FM पे।

कमल के सॉन्ग रेडियो रामजीम 90.4 FM पे सुन रहे हैं देवी जी की आवाज़ में। और आगे कई मैसेज है और कई गाने की भी फरमाइश है, तो कई गाने तो नहीं फरमा पूरी कर सकते हैं, और आगे अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे क्योंकि समय भी हो गए हैं समाप्ति का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि मंकेश साहनी वेस्ट चंपारण से, भैया हम भी जुड़ गए हैं और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, तो स्वागत है आपका। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय मैसेज करते हैं रोहित जी, आज बड़ी छोटा सा मैसेज किए हुए हैं, क्या बात है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हमारे मोबाइल खराब बा, लिखत नहीं क तो लिखता ख। और मैसेज करता नहीं यहाँ के बानी सावन शर्मा जी, तो चली कौन बात ना, राहुल भी स्वागत है कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि तीखी बातों से जख्म भरे तो नहीं है, ठुकरा दिए गए हैं पर डरे तो नहीं है, क्या हुआ अगर दिल टूट गया तो, मोहब्बत में हारे हैं मेरे तो नहीं है। और सोनू भाई नमस्कार, देवी जी का सुपर सॉन्ग। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है और इस मैसेज को पहुंचाए हुए हैं गुलाम हुसैन, तो इन्हीं के फरमाइश हम प्ले करेंगे। और पहले से मैसेज किए हुए हैं तो आप थोड़ा सा सब्र करें, कुछ मैसेज देख ले फिर आपके गाने हम प्ले करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मैं अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान माजा से गाने सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रामजीम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, का सोनू बाबू ई का सुनता नहीं, देवी जी का कहता नहीं, काहे दिल्ली में जड़ा गर्मी ज़्यादा गर्मी बाका जे गांव याद आवता शायद लागता, और हम तो सुनिया कि उन्हें बहुत बारिश भी होता, कहीं हो सके तो ऐसे ज़्यादा दिक्कत हो गई लग। और मैसेज करता नहीं वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सल नेपाल बेटर से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नाई सॉन्ग बिल्कुल गांव और शहर में अंतर है, नाई सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, वक्त बहुत कम है साथ बिताने में, इसे ना गंवाना कभी रुठने मनाने में, रिश्ता तो हमने बांध ही लिया है आपसे, बस थोड़ा सा साथ दे देना इसे निभाने में। और इस लाइन को भी करते हैं भेजते हैं सेंड करते हैं दिलीप जी, और कहते हैं कि सभी दोस्तों को गुड नाइट। चलिए अब हम भी बोलेंगे यही, अंतिम गाने प्ले करते हैं गुलाम हुसैन की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है। गाने का बोल देते हैं, सबसे हम दूर हुए हैं तुमसे मिलने के बाद, और डेडिकेट करते हैं मशरूम कौसर जुनेद कमरान भाई अरमान नौसाद फरहान जगदीप आयुष प्रिंस लक्की शमीर शाकिब रुबीना ब्यूटी हीना गुड़िया सजदा गुलशन शबीना यास्मिन सलेहा रोशनी आफरीन और आपको। तो चलिए हम भी सुनेंगे और कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन इसी कार्यक्रम में। आप सब सुनते रहें, अंतिम गाने एंजॉय करते रहें रेडियो रामजीम 90.4 FM पे, जो हमेशा कहता है सुना दिल से। नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-6755।

0: कसमानू खाने नचते ने सारे
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स दमदार माइलेज शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61212 पे।

0: से कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
1: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती। और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: प्रसाद क्लिनिक।
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
5: रेडियो रिमझिम।
4: सुनो दिल।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9797076575।

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए अब खास बात खुदा में।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथ है कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर

0: करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
4: All right.

0: सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में

0: शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
4: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
5: मैं फेडेक्स और दिल्ली GMR एयरपोर्ट को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
4: वी वांट टू क्रिएट ग्लोबल स्टैंडर्ड एयर कार्गो फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री।
0: एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,00,000,000 अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
6: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
12: कॉल करे 87894 18744।
13: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
14: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
15: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
16: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
17: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
18: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
19: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
18: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
16: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
9: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
10: All right.

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746864।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
5: ऑलराइट।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम,
5: सुनो दिल से।

0: का, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कोलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: 9.4
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57 902।
5: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम,
7: सुनो दिल से।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: ठक ठक
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494। जी हाँ, 8029494। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
3: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
4: जी नमस्ते मैम।
3: नमस्ते,
4: कैसे हैं?
3: जी मैं बढ़िया हूँ, आपने बताइए आप कैसी हैं?
4: मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता पानी हो गया?
3: हो गया। और आपका?
4: मेरा भी हो गया है। आप भारती जी बोल रहे हैं?
3: नहीं
4: जी,
3: जी मैं भारती नहीं हूँ।
4: अच्छा, और मनोरमा मैम नहीं आई है?
3: जी जी मैं बात कर रही हूँ आपसे।
4: मनोरमा या भारती,
3: क्या लगता है आपको?
4: पता नहीं, आप दोनों का आवाज एक ही जैसा है।
3: अच्छा जी, अच्छा नाम बता दीजिए अपना।
4: शिल्पी विद्यावत है।
3: तो क्या
4: जी?
3: जी क्या हो रहा था अभी?
4: अभी तो सिलाई कर रहे हैं। सोनी मैम नहीं आई है?
3: नहीं।
4: अब नहीं आएंगे क्या?
3: अब तो मुझे नहीं पता।
4: अच्छा, मुझे गाना सुनना था,
3: बता दीजिए।
4: कौन सी की आवाज में? कोई सॉन्ग सुना दीजिए।
3: कोई भी?
4: हाँ, न्यू नहीं लेकिन पुराना वाला।
3: जब आप इतना मुश्किल से कॉल किए हैं तो आप ही बता दीजिए कौन सा।
4: कोई भी ओल्ड सॉन्ग बता दीजिए, कौन सॉन्ग का।
3: ओके, आज ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहती हैं?
4: जी आपको, मनोरमा जी को। आप तो बता ही नहीं चले आप हैं कौन, मनोरमा या भारती।
3: तो वही तो मैं बोली कि क्या लगता है आपको?
4: मतलब पूरा 100% सुना है लेकिन लग रहा है कि आप भारती जी हैं।
3: अच्छा
4: बताइए कौन है?
3: चलिए जो समझ लीजिए।
4: अच्छा चलिए, आप दोनों को हो रहेगा और सभी दोस्तों को।
3: ओके, तो फिर यही करते हैं गाना आपका।
4: जी थैंक यू।
3: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
1: अभी आपके मोबाइल पर रिचार्ज ना है, आप चेती है सभी रिचार्ज ना बता रहे हैं, बोला रिंग कौन कौन कौन है।
0: जी जी तो अभी सर से डलवाया ना बोल के।
1: जी जी रक्षाबंधन इसका हम दुख गया, रक्षाबंधन वाला गाना अनु दुख गया का बाद में। जी जी जी अमन है, अशीष है, पवन है, राहुल है, आदित्य, अनुराग ले कभी। जी आपका आवाज कट कट के आ रहा है,
0: नेटवर्क प्रॉब्लम है।
1: जी जी
0: अब आवाज आ रही है।
1: जी जी आवाज आ रहा है।
0: जी तो बोल रहे हैं कि आप ये रेडियो रिंगजिम को कैसे सुनते हैं?
1: सुनते हैं रेडियो रिंगजिम, हेलो फरमाइश सुनते हैं, एसएमएस है। रात तो बातें तो नाइट सुनते हैं, रात के तो नींद रख देते हैं सबके। इधर तो बहुत धूप है, एकदम काफी धूप
0: है। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: सुंदरपुर सुंदरी सिवान जिला से।
0: अच्छा अच्छा चलिए तो मैं पूछ रही थी कि आप मतलब रेडियो रिंगजिम को कैसे सुनते हैं, रेडियो के माध्यम से या फिर मोबाइल?
1: रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, मोबाइल से नहीं, रेडियो।
0: अच्छा मतलब कब से सुनते आ गए आप?
1: सुनते आ गए हम लोग 2007 से की आज से।
0: अच्छा
1: जी शुरू शुरू में हुआ था तब से।
0: अच्छा अच्छा
1: ओकरे बाद से रेडियो आया था बाद में। ओकरे बाद रेडियो सनैया से सिवान में जी आगे रिंझिन आया था अपना गोपालगंज में, तब आया था एक दू को 2007 से सुनते हैं जी। अब उसी से कॉल से ओकरे बाद से कॉल लगा थे नंबर।
0: बढ़िया। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: अमन है, अशीष है, पार है, राहुल है, अजीत है, अनुराग है, कुली है।
0: ओके तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी जी जी जी नमस्ते
0: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4।
1: जी जी जी।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: Jab phone ring de bajte hai to kehte hai hello.
12: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: जी मैडम, मैं सुनील मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
14: आपकी आवाज कट के आ रही है, एक बार और बता दीजिए।
13: सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश।
14: अच्छा,
13: कौन बोल रहे हैं? मनोरमा मैम बोल रही क्या?
14: जी जी
13: मैडम, नमस्कार।
14: नमस्कार।
13: और आज मेरी पिक्चर है गरीबी अमीरी।
14: ओके।
13: और गाने के बोले भूल भुलैया सैया रास्ता भूल गई मैं घर जाऊं कैसे।
14: दो लाइन गा के बता सकते हैं?
13: जी जी, ये है ना, भूल भुलैया सैया अखियां तेरी रास्ता भूल गई मैं घर जाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे।
14: ओके। और ये गाना आप डेडिकेट करना चाहते हैं ना?
13: जी मैडम जी, आपको है, भाटी मैम को है, सोनी मैम को है, गजराज सिंह लोधी है, जितेंद्र राठौड़ है, गोपाल ओझाजी है, ककवासा से, सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट रहेगा। और ये कब प्ले होगा?
14: ये गाना आपका आज ही प्ले होगा।
13: ठीक है मैडम जी, धन्यवाद
14: जी। तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
13: ठीक है
14: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
13: धन्यवाद।

0: वालेकुम अस्सलाम।
1: कैसे हैं?
0: जी बढ़िया है, अपना बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ।
0: आपकी आवाज़ कट के आ रही है।
1: आ रही है आवाज़?
0: जी जी।
1: खुशी मेरा नाम है।
0: जी
1: खुशी।
0: खुशी तो फिर कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ। खाना ना हो गया?
0: और आपका? जी
1: अभी खाना बन रहा है मेरे घर।
0: तो नाश्ता हुआ है ना?
1: हाँ नाश्ता कर रहे हैं।
0: चलिए बढ़िया।
1: गाना बजा दीजिएगा।
0: बता दीजिए।
1: डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है।
0: क्या आप दो लाइन गा के सुना सकते हैं?
1: डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है।
0: अरे ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहती हैं?
1: आपको आज जितने रेडियो सुनते हैं सभी को और मेरी बहन को।
0: वैसे क्या करती हैं आप?
1: पढ़ने जाती हूँ।
0: किस क्लास की पढ़ाई करती हैं?
1: नाइन्थ।
0: अच्छा चलिए बढ़िया।

0: करें जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
0: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4
9: एफएम।
8: जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
9: ठीक है, मैं सुन रहा है।
8: बता दीजिए ना।
9: गीता था जिसके लिए
8: और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
9: सभी श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं।
8: वैसे आप रेडियो रिंगिंग को कैसे सुनते हैं? रेडियो रिंगिंग को आप कैसे सुनते हैं, रेडियो के माध्यम या
9: रेडियो?
8: बढ़िया, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है रिंकी 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते
1: नमस्ते,
0: मैं रोशनी बोल रही हूँ।
1: कहाँ से बोल रही है रोशनी जी?
0: पठानपट्टी से।
1: अच्छा,
0: आपने सुनाइए
1: जी। मेरा भी बढ़िया है। वैसे क्या हो रहा था?
0: मैच तो पहले हो गया।
1: जी जी हो गया। और आपका?
0: मेरा भी हो गया।
1: चलिए बढ़िया। वैसे रोशनी जी, आप क्या करते हैं?
0: पढ़ते हैं।
1: किस क्लास की पढ़ाई करती है? चलिए बढ़िया।
0: गाना सुना दीजिए।
1: बता दीजिए।
0: खेसारी लाल का देवता पितरला।
1: कौन सा?
0: खेसारी लाल का।
1: तो कौन सा गाना के नाम?
0: देवता पिता, मैम याद नहीं है।
1: तो फिर आप गाना बताएंगे दो लाइन गा के, तो कभी ना प्ले होगा? या फिर आप गाना चेंज भी कर सकती हैं।
0: तो अपने मन से बता दीजिएगा।
1: नहीं, आप इतना मेहनत से कॉल किए हैं, गाना तो बहुत सारा, बता दीजिए आपको कौन सा सुनना है।
0: खेसारी लाल का कोई भी गाना बजा दीजिए।
1: जैसे कि आपको कैसा सॉन्ग सुनना है? जैसे कि खेसारी लाल का गाना, आप सैड सॉन्ग सुनना चाहते हैं या फिर कोई रोमांटिक?
0: जी।
1: तो कौन सा दोनों में से?
0: सैड।
1: सैड सॉन्ग। ओके। और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहती हैं? ओके।
0: आपको पहले जो सुन रहे हैं उनको।
1: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू।
1: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: Now pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
7: Pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
9: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
10: To dosto, break ke baad आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 FM।
12: नमस्कार मैम।
11: नमस्कार,
12: मैं सुरेश बोल रहा हूँ।
11: जी जी, कहाँ से बोल रहे
12: हैं आप? जिला देवघर, झारखंड से मैम।
11: ओके, तो फिर कैसे हैं आप?
12: बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं मैम?
11: जी मैं भी अच्छी हूँ।
12: जी जी, आज गाना सुना दीजिए मैम, आन मिलो सजना फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में।
11: जी, और गाने के बोल?
12: गाने के बोल हैं, फलक से सितारे तोड़ के लोग लाए हैं, इस तरह के गीत के बोल हैं।
11: क्या आप दुल्हन गा के बता सकते हैं?
12: गाना मैम हमको उतना छाता नहीं है, बोल में बता दिया।
11: जी जी, मतलब कोई बात नहीं, आप दो लाइन बता दीजिए।
12: फलक से सितारे तोड़ के लोग लाए हैं, इस तरह के गीत के बोल हैं।
11: जी जी, वैसे तो अच्छा तो गाते हैं आप।
12: अच्छा नहीं है मैम, बेसुरा आवाज है मेरा।
11: नहीं, ऐसा थोड़ी, हम लोग सुनते हैं तो बोलते हैं।
12: जी, अगले बार कोशिश करूंगा मैं गा के सुनाने का।
11: जी जी बिल्कुल
12: जी,
11: आपका आवाज तो पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं।
12: थोड़ा रही, थोड़ा जल्दबाजी में है, टाइम लास्ट हो रहा है तो इसीलिए पूरा गाना सुना नहीं पाए। तो
11: कोई बात नहीं।
12: जी जी,
11: और ये गाना डेडिकेट भी है।
12: जी, सबसे पहले मैं आपको और रेडियो रिमी जितने लिख रहे हैं सबों को, और उसमें कुछ हमारे साथी सब हैं, मदन को लें, प्रभु को लें, जुगल को लें, कमली को लें, राजकुमारी हैं, श्रीधर प्रसाद यादव हैं, विष्णु प्रसाद यादव हैं, रोहित कुमार सिंह हैं, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
11: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
12: जी जी मैम, गाना आज बजेगी मैम ने कल?
11: आज ही बजेगी।
12: जी जी
11: जी,
12: और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
11: जी, तो फिर सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
12: ओके मैम, थैंक यू।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैडम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: मैं मथुरा भूषण बोल रहा हूँ, गोपालगंज से, गोपालगंज जिला से।
1: जी, और आपका नाम?
0: मेरा नाम हुआ शौकत अली।
1: अच्छा
0: और बताइए।
1: जी, सब बढ़िया है, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं मैडम। बहुत दर्श लगा रहा था, गौर नहीं लग रहा था, बिजी बिजी आ रहा था।
1: जी, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं तो।
0: नहीं, हम पहले वाला लगाए हैं, ठीक है ना?
1: अच्छा जी, पहली बार।
0: हाँ, पहली बार लगाए हैं जी। सुनते तो बहुत दिन से, मतलब बहुत दिन से सुनते हैं, रेडियो में सुनते हैं, फिर अभी मतलब मोबाइल में सुनते हैं, ठीक है ना? बहुत दिन सुनते हैं, लेकिन अभी सोचे लगाते हैं एक बार, तो नहीं लग रहा था, बहुत दिन लगा रहे थे।
1: जी, चलिए अब लग
0: मैडम गाना सुनना है।
1: बता दीजिए।
0: वो भजपुरी नहीं है ना, सुमन सिंह का लुट गई नहीं प्यार में। हेलो
1: जी,
0: वो वाला गाना नहीं है, लुट गई नहीं प्यार में, वही वाला गाना सुनना है।
1: दुल्हन गा के बता सकते हैं आप?
0: नहीं मैडम, गाना तो नहीं गाते हैं, वो लुट नहीं है गाना है, वो ये अलग लिखिएगा ना, यही अला वो आ जाएगा गाना।
1: अच्छा, एक बार और बता दीजिए।
0: लुट गई नहीं प्यार में।
1: अच्छा, और डेडिकेट भी है?
0: हाँ मैडम, जितना भी रेडियो इंजन सब सुनने वाले सबका है, ठीक है
1: जी। वैसे तो आप रेडियो इंजन को कैसे सुनते हैं, मोबाइल ऐप से?
0: हाँ, मोबाइल से अभी सुनते हैं, पहले रेडियो था, ठीक है ना, बहुत दिन से। हाँ, पहले रेडियो में सुनते थे, ठीक है ना, अभी मोबाइल में सुनते हैं।
1: मतलब गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हैं?
0: जी जी मैडम।
1: चलिए, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम?
0: मैडम अच्छा लगता है हमको, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत दिन से सुनते हैं, ठीक है ना।
1: अच्छा जी,
0: जहाँ रेडियो रिमझिम है, जहाँ ना ये है ना, इसका मतलब रिमझिम का ये है, उधर हम गए थे एक बार इंटरव्यू मारने के लिए भी, उसके नीचे इंटरव्यू होता है ना, बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए। हाँ, उधर भी गए थे कितने बार, ऐसे तो गोपाल जाते जाते रहते हैं, ठीक है ना।
1: चलिए,
0: ठीक है मैडम,
1: ठीक है, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है मैडम।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
6: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
7: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजम 90.4 FM में।
9: नमस्ते मैम।
8: नमस्ते,
9: कैसे हो?
8: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
9: मैं भी बहुत अच्छी
8: हूँ। जी अच्छी की बात है। वैसे आपका नाम?
9: मैं कुमारी, सासम से बोल रही हूँ।
8: तो क्या हो रहा था वैसे?
9: अभी तो कॉल लगा रही थी, बैठी हूँ।
8: अच्छा, तो कॉल लग गया तो बता दीजिए फरमाइश अपनी।
9: शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ।
8: क्या आप दो लाइन गा के सुना सकती हैं?
9: याद नहीं है।
8: दो लाइन ही गाना है आपको?
9: याद नहीं है, अभी गा दूंगी।
8: चलिए कोई बात नहीं है। और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
9: सबसे पहले आपको और जितने भी रेडियो सुनते हैं।
8: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
9: जी

0: मैडम
1: जी, हम पूर्वी चंपारण बिहार से झूना साजी बोल रहे हैं। फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में हूँ।
0: अच्छा, क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है
0: जी। तो क्या हो रहा था अभी?
1: काम हो रहा है, बिल्कुल काम कर रहा था।
0: अच्छा, बढ़िया। तो बता दीजिए फरमाइश।
1: राखी बनवा लो भैया, सावन आई भोजपुरी फिल्म के गाना।
0: क्या डोलाइन गाके बता सकते हैं?
1: हाँ, राखी बनवा लो भैया, सावन आई भोजपुरी।
0: ओके, और ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते
1: हैं? धाम से है अर्जुन अकेला जी, संजय शाह जी, और कीरपुर बागा से है माधो मोहतो जी, और दिनेश शाह जी, उमेश शाह जी, और मनीष चौधरी जी, अरुण चौधरी जी, और रेडियो रंजीम सुनने वाले सब श्रोता को सुना दीजिए। नमस्कार।
0: नमस्कार। तो प्ले करते हैं गाना आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीम 90.4 FM।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: Now pick it up,
5: hello.
4: Now pick your phone up,
5: hello.
4: Pick it up,
5: hello.
4: Now pick your phone up.
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
7: नमस्कार मैम, मैं सुबोध साहू बोल रहा हूँ, बेगूसराय से।
8: नमस्कार, कैसे हैं आप?
7: जी,
8: क्या हाल चाल है आपका?
7: जी ठीक है मैम, आपका क्या हाल चाल है?
8: जी मेरा भी बढ़िया है।
7: खाना पीना हो गया मैम जी?
8: हो गया। और आपका?
7: जी हो गया खाना होना।
8: चलिए बढ़िया।
7: तो मैम गाना सुनवा दीजिएगा, वो राखी हर साल पहला सावन माम, शत्रुघ्न सिन्हा का नहीं, बिहारी बाबू का।
8: जी जी,
7: उसी फिल्म का है, यही गाना सुनवा दीजिएगा।
8: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
7: जी मैम, सबसे पहले आपको और पूरे रिमझिम परिवार को सुनवाना चाहता हूँ।
8: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
7: जी नमस्कार।
8: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: इसका अलग से नंबर है।
1: अच्छा
0: जी, इसको हमारे रेडियो
1: इस प्रोग्राम में जो फंक्शन लिखा था इसी में, या जैसे मैसेज हम भेजते हैं
0: आप
1: मैसेज
0: जी आप व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं या फिर
1: व्हाट्सएप को मैं ये आपको सेव किया है नंबर, लेकिन वो व्हाट्सएप नहीं आपका शो करता है, इसमें इनवाइट लिखता है बस मंदिर
0: जी। 12 बजे जो शो चलता है यूरोप का, उसमें नंबर बताया जाता है आपको
1: जी,
0: उस पर नोट कर लीजिएगा, मैसेज डालिएगा ना आप तो हाथ पर मिल जाएगी। और आप
1: इनवाइट लिखा है, मैंने नंबर दिया है, चेक किया है तो
0: जी, तो वहाँ का हम दो नंबर है, जैसे कि एक कॉल के माध्यम से लगता है और एक व्हाट्सएप नंबर, तो आप कॉल के माध्यम से जो होता है वो सेट किएंगे, इसीलिए इनवाइट लिख रहा होगा।
1: तो वैसे तो नंबर में इसमें कब मैं इसको किया है, लेकिन चेक करना पड़ेगा
0: जो अभी 12 बजे जो शो चलता है ना उसमें नंबर बताया जाता है, आप ठीक कर नोट कर लीजिएगा, उसके बाद से लग जाएगा और आप गाना उसी टाइम सुन सकते हैं जी। तो फिर ये वाला गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबसे।

0: हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: Now pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
9: Pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
11: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो।
12: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: नमस्ते मैम।
14: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
13: हम रामाजी प्रसाद बोल रहे हैं।
14: जी जी, क्या हाल चाल बा?
13: हाल चाल ठीक बा। अरे बरखा भयो ने?
14: हाँ हाँ, बारिश तो खूब भयल रात के।
13: हाँ तो भयो गेल ने, पूरा नखे भर दिन कमे भयल, पानी लागल रहे के।
14: अच्छा,
13: गाना तो नहीं राखी बंधन वाला?
14: बता दी।
13: चंदा रे जाके भैया से कहना बहना तेरा याद करे।
14: कई दूल्हे गाके बता सकते नहीं?
13: अब शुरुआत है बा, चंदा रे जाके भैया से कहना बहना तेरा याद करे।
14: अच्छा, अरे गाना सुनवाए के लिए क्योंकि
13: नीलम कुमारी बारी, विमल कुमारी बारी, नीतू कुमारी बारी, अनुराधा देवी बारी, यही तो सुना होगा।
14: अच्छा खाली ठीक बा, वैसे का हो तर लाभी
13: गाना सुन दे रही चल चला फरमाइश कर लेने ये गाना बजाने की रखिया बंदाला भैया सावन आई।
14: बहुत अच्छा गाना भाई, चली बढ़िया बात का फिर प्ले करते गाना।
13: नमस्ते
14: नमस्ते, सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम ना। नमस्कार
1: जी, मैं सत्य कुमार शाह बोल रहा हूँ, प्रणाम नंबर
0: जी। जी कैसे हैं आप?
1: जी मैं अच्छे हैं, आप अपना बताइए कैसे।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: और सब आगे लोग कैसे हैं?
0: जी यहाँ पे भी सब कोई बढ़िया है।
1: मैम कल सोनी मैम जुड़ी थे का?
0: नहीं
1: भारती
0: जी होंगी।
1: मैम जाना सुना थी,
0: बता दीजिए।
1: बोल राधा बोल,
0: ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
1: छोटा भाई बहन सुनना सुनना सुन रहा है, सभी सुना और आप भी सुनिएगा।
0: जी जी, अब क्या हो रहा था?
1: बस फोन लगाते लगाते फोनली दूस गया है।
0: जी जी,
1: इतना श्रोता बढ़ गया है ना कि कॉल जब लग ही नहीं था।
0: जी जी, अभी एक कॉल करता है तो दूसरा आ जाता है।
1: जी जी जी, और मैम सोनी मैं फाइनली चली गई था?
0: नहीं।
1: अच्छा, और सब अच्छा है ना?
0: जी जी सब बढ़िया है।
1: गाना सुना दीजिए।
0: जी प्ले करते हैं गाना आपका।
1: थैंक यू मैम।
0: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकिन 90.4 एफएम।
1: जी मैम, चौथा कुमारी है ना?
0: जी
1: जी, चौथा कुमारी, सभी श्रोताओं को धन्यवाद है।
0: जी जी, आप
1: चौथे कुमारी के लिए। जी मैम, थैंक यू।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22567 या 97-7-14-86-164।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: जी मैम, नमस्कार।
8: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
9: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मेयर MP से। मैम आप कैसे हो मैम?
8: जी मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए।
9: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो में फोन लगाते हुए मैम, तो बहुत देर से तो ट्राई कर रहे थे, अभी तो देखो समाप्ति होते होते तो अभी फोन लगा मैम।
8: जी चलिए कोई बात नहीं, बता दीजिए फरमाइश अपनी।
9: जी गाना सुनवा दीजिएगा, गाने के बोले तेरे इसमें पागल हो गया दी
8: वाला।
9: और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
8: ओके, वैसे क्या हो रहा था अभी?
9: तो कुछ नहीं मैम, फोन ट्राई कर रहे थे, फोन भी लग गए।
8: नहीं करते हैं गाना आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: राणा जी खबर पक्को है, वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नमस्कार।
0: रिकॉर्डिंग होता है, गाना सुनवाते हैं नहीं क्यों?
1: ऐसा थोड़ी है कि रिकॉर्डिंग होगा और गाना आपका।
0: हम सुनते रहते हैं, हरदम सुनते रहते हैं रेडियो। जब भी रिकॉर्डिंग ऐसी चलता है तब सुनते हैं।
1: अच्छा, तो कब कराए थे आप अपना रिकॉर्डिंग?
0: बुधवार को।
1: बुधवार को, और आपका गाना नहीं बजा?
0: हाँ, आप ही तो किए थे
1: जी। आप नाम बता सकते हैं मेरा?
0: आप मनोरमा मैम बोल रहे हैं?
1: जी जी।
0: हम लोग आवाज एक बार में पहचान लेते हैं और कोई भी आरजे को।
1: तो
0: जबकि सोनी मैम को और भारती मैम को आवाज एक ही है, थोड़ा मोड़ा आपका आवाज भी उनसे मिलता जुलता है।
1: जी जी। तो मैंने तो जितना कॉल रिकॉर्ड किया था मैंने तो बजाया था।
0: नहीं, अब बजा हम सुन रहे थे एकदम। हम सोचते हैं कि अब आएगा, अब आएगा।
1: अच्छा, तो फिर या फिर मुझसे ही गलती हुई होगी, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ आपसे।
0: चलिए, अब माफी तो ऊपर वाला देते हैं, हम लोग क्या देंगे।
1: मतलब था इतना मेहनत से कॉल रिकॉर्ड करा है और मेरे से मिस्टेक हुई होगी या फिर
0: खाना पीना हो गया है।
1: जी जी, हो गया। और आपका?
0: अब होगा, अभी तो मंदिर से आ रहे हैं।
1: अच्छा जी, इस टाइम?
0: हाँ जी
1: जी, बहुत लेट हो गया ना।
0: हाँ, भीड़ भाड़ है ना मंदिर पर, काफी भीड़ है। क्या,
1: कहाँ से बोल रहे हो?
0: हम श्यामपुर से बोल रहे हैं। वो वहाँ विजयपुर मंदिर है ना, हम वो विजयपुर की बैठ ढाला के पास।
1: जी जी।
0: हाँ, वही मंदिर पे
1: बैठे। पूजा पाठ हो गया?
0: पास ही में है हम लोग।
1: तो अच्छा से पूजा पाठ हो गया ना?
0: हाँ जी, बहुत अच्छा।
1: चलिए बढ़िया। तो आपकी फरमाइश बता रही हूँ।
0: फरमाइश तो वही फरमाइश चलेगा, भक्ति है।
1: कौन सा?
0: वही बजा दीजिए। हाँ, ओम नमः शिवाय।
1: ओके। और डेडिकेशन?
0: आज अभी को आज चलेगा?
1: जी जी, आज चलेगा।
0: आज शाम को सुनवा दीजिएगा।
1: जी जी, अगर आज नहीं बजा तो समझिए कि कल बजेगा, क्योंकि बहुत सारे आ चुके हैं अपने लिए से, तो हो सकता है।
0: जी,
1: लेकिन पूरा कोशिश रहेगा कि ये गाना आपका आज ही चले। जी, तो नहीं करते हैं गाना आपका।
0: जी मैम, थैंक यू।
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: Now pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
0: Pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009994911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434668 पे।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा, मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
11: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
13: एपिसोड नंबर 45।

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें मोर पंख पर बनी आंख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ वो मेंढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदर पूर्वक श्रद्धानत हो पति के वचन सुनने लगी।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अर्जन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वतः एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है, इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन 10 वर्षों में यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली के बिदुपुर स्थित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आयोजित कार्यक्रम में आज से राज्य में विद्यार्थी सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। विभिन्न जिला मुख्यालयों में शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक और संस्थागत समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। विद्यार्थी सहयोग शिविर प्रत्येक महीने के चौथे मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन शिविरों में विद्यार्थियों को अपनी शिकायतें और सुझाव दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। प्राप्त शिकायतों का अधिकतम 30 दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न जिलों में विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। मुंगेर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। सुपौल जिले के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में आयोजित शिविर में विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया गया। अररिया के राजकीय पॉलिटेक्निक में आयोजित विद्यार्थी सहयोग शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी विनोद दुहन ने किया। उन्होंने छात्र छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और सुझाव भी लिए। शेखपुरा के 20 शिक्षण संस्थानों में शिविर का आयोजन किया गया। इधर भोजपुर, अरवल समेत विभिन्न जिला में विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जहां अधिकारियों ने विद्यार्थियों की समस्याएं सुनी और उनके निदान का आश्वासन दिया। शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण में निगेटिव मार्किंग हटाने तथा एकल परीक्षा कराने की मांग को लेकर छात्रों ने आज पटना के गांधी मैदान से मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी छात्र लोक सेवक आवास का घेराव करना चाहते थे। पुलिस ने विरोध मार्च को डाक बंगला चौराहे के समीप रोक दिया। इस बीच प्रदर्शनकारी छात्रों और प्रशासन के बीच झड़प भी हुई। एहतियात के तौर पर कई छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राज्य सरकार छात्र हित के लिए संकल्पित है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि छात्रों की अधिकतर मांगे मान ली गई हैं और अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप भी लगाया है।
2: जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं, उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें, सरकार उनकी है। लेकिन तेजस्वी जी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर प्रायोजित कार्यक्रम रख रहे हैं, तो ये बात बिहार की जनता भी समझती है और छात्र भी समझते हैं।
0: जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि नियम कानून के तहत विद्यार्थियों की मांगों को पूरा किया जा रहा है। श्री कुमार ने कहा कि छात्र धैर्य रखें और विपक्ष के झांसे में न आएं।
3: जो भी विद्यार्थियों का रोजगार पाने वाले की जो भी डिमांड है, समस्या है, सरकार तो उसको गंभीरता से ले रही है और जो नियम है, जो कानून है, उसमें जो प्रोविजन है, उसके हिसाब से उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो हम अपने बच्चों से अपील करेंगे कि आप थोड़ा धैर्य रखें, इन लोगों के झांसे में नहीं पड़े। ये लोग रोजगार देने वाले नहीं है, ये लोग आपके खून और पसीना का इस्तेमाल करके अपना राजनीति चमकाने वाले लोग हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है।
0: राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि सरकार छात्रों के साथ संवाद की बजाय उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने का प्रयास है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच गतिरोध समाप्त करने की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं। विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े छात्र नेताओं ने आज अपनी मांगों को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। मुख्य सचिव ने भरोसा दिया है कि छात्रों की मांगों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर सकारात्मक जवाब मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष आयोजित होने वाली सीटीईटी परीक्षा स्थगित कर दी है। बोर्ड ने जारी सूचना में कहा है कि 1 सितंबर से सीटीईटी आवेदन पोर्टल फिर खोला जाएगा और आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही परीक्षा की संशोधित तिथि की घोषणा की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO परीक्षा का विज्ञापन फिर से जारी करेगा। आयोग ने कहा है कि इससे नए अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज एनीमिया मुक्त बिहार अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। पटना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि अभियान के तहत बड़े पैमाने पर लोगों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।
1: एक अभियान आज हम लोगों ने शुरू किया। बिहार में जितने भी बच्चे हों या हमारी बहने हैं, सबके जांच किए जाएंगे। पर एनीमिया का जो जांच होगा, इसके माध्यम से जितने भी लोग पाए जाएंगे, सबका उपचार करने का काम बिहार की सरकार करेगा। टारगेट किया गया कि 1 करोड़ से अधिक लोगों को इसके सीधे स्वास्थ्य लाभ देने का काम बिहार की सरकार करने का काम करेगा।
0: इस अभियान के तहत बीमारी की जांच, उपचार, पोषण संबंधी परामर्श और गंभीर मरीजों को उच्चतर स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आज पटना में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान समाज कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग और कृषि विभाग समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में एग्रीस्टैक, किसान रजिस्ट्रेशन, पीएम सूर्य घर योजना और टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा की अगुवाई में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने आज बिहार दौरे के 3रे दिन नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। सांसदों ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम, शोध, अकादमिक सहयोग और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी समुदाय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। सदस्यों ने नालंदा की ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक वैश्विक शिक्षा और शोध से जोड़ने की विश्वविद्यालय के प्रयासों की जानकारी ली और इसे सराहा। सूक्ष्म, लघु और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान मिला है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार एमएसएमई और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक अमन समीर को ये सम्मान सौंपा। राज्य ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME के तहत सबसे अधिक संख्या में स्वीकृतियां प्राप्त की हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता प्रदेश के विभिन्न भागों में बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज बक्सर और रोहतास जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, गोपालगंज, सीवान और पश्चिम चंपारण जिले में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है।
2: दिनांक 26 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। बक्सर, गोपालगंज, सिवान एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: उत्तर भारत में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर राज्य में बक्सर से लेकर कहलगांव तक कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भागलपुर और कहलगांव में जलस्तर बढ़ा है, जबकि बक्सर, पटना के दीघा घाट और मुंगेर में इसमें कमी दर्ज की गई है। इधर घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के दरौली में, गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में, बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में लाल निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने बछवाड़ा प्रखंड में बाढ़ की स्थिति के बारे में जिलाधिकारी और बाढ़ नियंत्रण में जुटे अधिकारियों से फोन पर जानकारी प्राप्त की है। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जाए और आवश्यकता अनुसार लोगों को राहत पहुंचाई जाए। आज पूर्व मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के अध्यक्ष रहे बीपी मंडल की जयंती है। इस अवसर पर पटना में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर स्वर्गीय बीपी मंडल के पैतृक स्थान मधेपुरा जिले के मुरहों में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव, स्थानीय विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर, निरंजन मेहता समेत अन्य गणमान्य लोगों ने उनके समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। गोपालगंज के बैकुंठपुर में बाबा धनेश्वर नाथ सिन्हासिनी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आज भोजपुर जिले के विभिन्न स्कूलों में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बढ़ते साइबर फ्रॉड से बचाव की जानकारी विद्यार्थियों के साथ साझा की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में यूपीआई की शुरुआत के 10 साल पूरे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वैशाली के बिंदुपुर से विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत की। हर महीने के चौथे मंगलवार को लगेगा शिविर। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, छात्रों की अधिकतर मांगे मान ली गई हैं, विपक्ष के झांसे में न आए छात्र। और गंगा नदी में उफान से बक्सर, पटना, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन सतर्क। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रिक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम,
8: सुनो दिल से।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6550।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
9: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।
10: जबनी

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
10: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
11: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान वडोदरा में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के पद को भरा जाना है। अनुसूचित जाति के लिए 7, जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 और EWS वर्ग के लिए 4 पद उपलब्ध हैं। इच्छुक उम्मीदवार योग्यता, अनुभव, सामान्य विवरण, आवेदन पत्र और विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पता है IIIT वडोदरा.ac.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में आवश्यकता है इन पदों को भरने की। सहायक प्रशासन अधिकारी पदों की संख्या 2, निजी सचिव 5, सतर्कता प्रकोष्ठ सिविल हेतु सहायक अभियंता 1, प्रबंधक पर्यवेक्षक गैस अधिकारी 1, वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी 1 पद, परिवहन पर्यवेक्षक 1 पद, सहायक लेखा अधिकारी 2 पद, सहायक भंडार अधिकारी 3 पद, तकनीकी सहायक 16 पद, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 14।

0: 14 पद, व्यक्तिगत सहायक 7 पद, फार्मासिस्ट ग्रेड 1 11 पद, चिकित्सा अभिलेख अधिकारी 4 पद, स्वच्छता अधिकारी 3 पद, वरिष्ठ फार्मासिस्ट 3 पद, सहायक सुरक्षा अधिकारी 1 पद और धुलाई प्रबंधक 1 पद। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार देख सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल की वेबसाइट, जिसका पता है www.aimsbhopal.edu.in। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। वरिष्ठ नाविक सह रसोईया, कारपेंटर, मशीनिस्ट और वेल्डर, इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को श्री विजयपुरम बेस में नियुक्त किया जाएगा। योग्यता, वेतन, आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 22 अगस्त 2026 से 28 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। कंपनी सचिव सह मुख्य प्रबंधक, कॉरपोरेट सेवाएं और वरिष्ठ सलाहकार विधि। विस्तृत पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा, नियम एवं शर्तें, आवेदन प्रक्रिया तथा अन्य विवरण के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.nmdfc.org। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली रोड लखनऊ आमंत्रित कर रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए आवेदन। विभाग और विशेषज्ञता इस प्रकार है: सामान्य बाल रोग, बाल फेफड़ा रोग, बाल न्यूरोलॉजी, बाल ऑन्कोलॉजी, बाल हृदय रोग, बाल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, बाल शल्य चिकित्सा सुपर स्पेशलिटीज, बाल एवं नवजात एनेस्थीसिया, बाल क्रिटिकल केयर, बाल आपात चिकित्सा और बाल रेडियो डायग्नोसिस। कुल मिलाकर 70 पद उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 22 अगस्त से 28 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र, जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यता, वेतन और अन्य आवश्यक नियमों और शर्तों की पूरी जानकारी मिलेगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में भरे जाने हैं ये पद: चिकित्सा अधीक्षक, रजिस्ट्रार, कार्यकारी अभियंता सिविल, कार्यकारी अभियंता इलेक्ट्रिकल, वरिष्ठ लेखाधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय अधीक्षक और उच्च श्रेणी लिपिक। आवेदन पत्र, पात्रता मानदंड, वांछनीय योग्यता, अनुभव और संबंधित विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.aimsgorakhpur.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज सभी रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई। चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: 90.4 FM।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है दिलीप ट्रॉफी के नॉर्थ ईस्ट जोन पर पारी और 210 रन की जीत बनाते हुए।
1: आज के इस अंक में बस इतना ही, मुझे यानी नवीन और शक्ति को जी इजाजत, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा, दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
3: इस दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
4: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो, यूपीआई तो होता ही है, अपने अब यूपीआई मोबाइल से कर, ये बेनिफिट मिला है।
3: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
5: सीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
2: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
6: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
2: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
7: फोन पे हो, गूगल पे हो, इससे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है। और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया, जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
8: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSME और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दो दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झिंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
9: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
10: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
2: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में दो बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
11: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ।
2: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। UPI completes a decade making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for everyone.
13: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
14: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
15: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
16: भरोसे वाले से लेंगे,
15: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
16: और कीमत भी।
15: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
17: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
18: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
17: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
19: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
17: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
20: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
17: कॉल करें 85070-32042 पे।
21: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
22: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
21: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज, और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
23: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
24: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
23: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
24: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
23: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
1: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
1: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
1: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
3: प्रसाद क्लिनिक।
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
25: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। विद्यार्थी सहयोग शिविर का हुआ आयोजन, अनीमिया मुक्त बिहार अभियान की हुई शुरुआत, जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक, अभिलेखों के संधारण में कारगर है ई निबंधन व्यवस्था, प्रधानाध्यापक को किया गया निलंबित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज थावे के महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक, छात्रावास एवं अन्य समस्याओं को सीधे सुनना तथा उसके समाधान की दिशा में त्वरित एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना था। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित शिविर के दौरान सामान्य शाखा प्रभारी अजय कुमार ने छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने छात्राओं से उनकी पढ़ाई, प्रशिक्षण, छात्रावास, संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं तथा दैनिक स्तर पर आने समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। छात्राओं ने भी अपनी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुझावों को खुलकर उनके समक्ष रखा। इस दौरान बताए गए समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और संबंधित मामलों के समयबद्ध निष्पादन की दिशा में आवश्यक निर्देश दिए गए। सामान्य शाखा प्रभारी अजय कुमार ने छात्राओं को आश्वस्त किया कि विद्यार्थियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। छात्राओं ने भी अपनी समस्याओं को बिना संकोच संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखने तथा विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का उपयोग करने के लिए छात्राओं को प्रेरित भी किया गया। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने आज अनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अनीमिया मुक्त बिहार अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही गोपालगंज जिले में भी सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत 6 माह से लेकर 19 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं के हेमोग्लोबिन स्तर की जाँच की गयी। इसके अतिरिक्त गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की हेमोग्लोबिन की भी जाँच हुई। यह अभियान 25 अगस्त से प्रारंभ होकर 30 नवंबर तक संचालित किया जाएगा। जांच के दौरान जिन बच्चों, किशोर किशोरियों और महिलाओं में हेमोग्लोबिन का स्तर निर्धारित मानक से कम पाया जाएगा, उन्हें आवश्यकतानुसार आयरन सिरप तथा IFA की गुलाबी, नीली एवं लाल गोलियां उपलब्ध कराई जाएंगी। अभियान के माध्यम से अनीमिया की पहचान कर समय पर उपचार एवं दवा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अनीमिया को लेकर बताया गया कि प्रभावित बच्चों, युवाओं और महिलाओं में निचले पलक के अंदरूनी हिस्से में लालिमा की कमी देखी जाती है। त्वचा एवं हथेली का पीलापन या लालिमा में कमी, नाखूनों में बदलाव, जीभ में सूजन, जल्दी थकान, सांस फूलना, पढ़ाई एवं खेल कूद में मन नहीं लगना, सुस्ती एवं अधिक नींद आना तथा बार बार बीमार पड़ना या भूख नहीं लगना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसे लक्षण जिन लोगों में दिखे उनकी तत्काल जांच कराई जाए। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसका जांच और इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। आगामी पर्व त्योहारों एवं महावीरी अखाड़ा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील जनता से की गई। इसको लेकर शांति समिति की जिला स्तरीय बैठक हुई जिसमें सर्व धर्म संभाव एवं आपसी भाईचारे के साथ पर्व त्योहार मनाने का आह्वान किया गया। साथ ही अफवाह एवं भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर जिला प्रशासन कड़ी निगरानी रखेगा। दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में महावीरी अखाड़ा जुलूस के लिए पूर्व से लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया गया। लाइसेंस धारक पूर्णतः जवाबदेह भी होंगे। जुलूस में डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति दी गई है। हथियारों के प्रदर्शन, अश्लील संगीत एवं नृत्य पर भी पूर्ण रूप से रोक लगाया गया है। शांति समिति की बैठक में जिलाधिकारी समीर सौरभ ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक निर्देश दिया और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का भी निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा, आपसी प्रेम, सौहार्द एवं सामुदायिक सहयोग की मिसाल गोपालगंज ने कई बार पेश की है। इसे बनाए रखना प्रशासन के साथ साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति का भी सामूहिक जिम्मेदारी है। महावीरी अखाड़ा उठाने वाले लाइसेंस धारियों को कहा गया है कि आप अपने स्तर से भी पर्याप्त संख्या में वॉलेंटियर्स को जुलूस और झंडा के दौरान तैनात रखें। सभी वॉलेंटियर्स के पास पहचान पत्र होना आवश्यक है। जुलूस के दौरान वॉलेंटियर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और वे प्रशासन एवं पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। बैठक में उपस्थित शांति समिति के सदस्यों ने भी इस बात पर सहमति व्यक्त की कि अखाड़ा आयोजन समितियां अनिवार्य रूप से पूर्व में लाइसेंस प्राप्त करेंगी तथा जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर लाइसेंस धारक की पूरी जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ई निबंधन व्यवस्था की सफलता के लिए नागरिक सेवा प्रदाता, निबंधन विभाग के पदाधिकारी और कर्मी, अधिवक्ता, कातिब, मुद्रांक विक्रेता और सभी अन्य संबंधित पक्षों का समन्वित सहयोग आवश्यक है। उन्होंने सेवा प्रदाताओं से अपील किया है कि वे नई व्यवस्था के तकनीक प्रक्रिया को पूरी तरह से समझें और इसमें सहयोग करें। आम जनता और कातिब संघ के प्रतिनिधियों से भी अपील की गई कि वे बिहार सरकार की इस नई तकनीक आधारित ई निबंधन व्यवस्था को अपनाने में अपना अपेक्षित सहयोग करें। उन्होंने कहा कि ई निबंधन की प्रक्रिया से अभिलेखों के संधारण में काफी सुविधा मिल रही है और इससे लोगों को आने वाले समय में काफी लाभ भी मिलेगा। बिहार सरकार की नागरिक केंद्रित सेवाओं एवं डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जिलाधिकारी के द्वारा समीक्षा बैठक की गई जिसमें ई निबंधन व्यवस्था का शुभारंभ जो 17 अगस्त से हुआ है उसको लेकर अवर निबंधक काली आशीष के द्वारा ई निबंधन की पूरी प्रक्रिया, इसके लाभ और विभिन्न स्तरों पर अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में कातिब, दस्तावेज लेखक, मुद्रांक विक्रेता, प्रशिक्षु, दस्तावेज निबंधन से संबंधित अधिवक्ता तथा अन्य संबंधित प्रतिनिधियों को भी इस नई व्यवस्था के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। सभी स्टेक होल्डर्स से नई तकनीक आधारित व्यवस्था को समझते हुए नागरिकों को बेहतर एवं सुगम सेवा उपलब्ध कराने में सक्रिय सहयोग की अपील की गई। भोरे के प्राथमिक विद्यालय बनकटा खास के प्रधानाध्यापक ब्रजेश राम को तत्काल प्रभाव से विभाग ने निलंबित कर दिया। डीएम न्यायालय में दिलशाना खातून बनाम बिहार सरकार मामले में आदेश के अनुपालन में कार्रवाई, वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना, विभागीय नियमों के विपरीत आचरण, लापरवाही और भ्रामक प्रतिवेदन देने सहित कई गंभीर आरोप लगे। निलंबन अवधि में इनको माझा प्रखंड संसाधन केंद्र में तैनात किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि अब इनके निलंबन के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कटिया थाना की पुलिस ने चोरी के एक कांड में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी सुदामा यादव पिता स्वर्गीय बलिस्टर यादव उर्फ विनोद यादव, यह खड़ही थाना कटिया के निवासी है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरम, जिसे सामान्यतः कैरेट बीड, गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है, कृषि जैव विविधता पशुधन एवं मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करने वाला यह एक अत्यंत हानिकारक आक्रामक खरपतवार है। देश में लगभग 3.5 हेक्टेयर भूमि पर इसका फैलाव हो चुका है और इसका प्रसार लगातार चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। यह खरपतवार फसल उत्पादकता में कमी और पर्यावरणीय क्षरण के साथ साथ डर्मेटाइटिस अस्थमा तथा नाक त्वचा एवं नाक श्वसनी संबंधित एलर्जी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का भी प्रमुख कारण है। इस आक्रामक खरपतवार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना के द्वारा अपने अनुसंधान केंद्र एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन और किसानों की आजीविका में सुधार विषय पर भी 2 दिवसीय क्षमता निर्माण आदान सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसका भी समापन हुआ। इसमें गया जिले के टनकुप्पा प्रखंड के गजाधरपुर गांव के अनुसूचित जाति के 16 किसानों ने भाग लिया था। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक एवं लाभकारी तरीके से बकरी पालन की उन्नत तकनीकों से अवगत कराना था। सहयोग से 16 से 22 अगस्त तक 21वां पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्ताह के दौरान किसानों तथा आम जनता को पार्थेनियम के दुष्प्रभावों और इसके प्रभावी प्रबंधन के उपायों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता एवं प्रसार गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी दी गई और वैज्ञानिकों, प्रशासनिक एवं तकनीकी कर्मचारियों, किसानों, विद्यार्थियों तथा खेतिहर श्रमिकों तक पार्थेनियम प्रबंधन संबंधित जानकारी पहुँचाई जा रही है। भोरे थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बनिया छापर में कार्रवाई करते हुए एक करकट नुमा मकान से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से स्मैक जैसा मादक पदार्थ मिला है। पकड़े गए आरोपी सुजीत कुमार और करण कुमार ये दोनों बनिया छापर थाना भोरे के निवासी हैं। पुलिस ने इनके स्मैक जैसे मादक पदार्थों को जब्त करते हुए आवश्यक जाँच शुरू कर दी है और दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सासामूसा बाजार के पास एटीएम कार्ड छीनकर एक व्यक्ति से नगद राशि निकालने के प्रयास में 112 की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि घटना स्थल पर पीड़ित मुकेश कुमार गुप्ता के बयान पर यह कार्रवाई की गई। ये चतुर बगहा थाना जादोपुर के निवासी है। इन्होंने बताया कि एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसा निकालने के लिए गए थे। इसी दौरान एक व्यक्ति उनके हाथ से एटीएम कार्ड छीन लिया और उक्त कार्ड से नगद राशि निकालने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान मुसद्दिक अंसारी, पिता मैनुद्दीन अंसारी, साकिन धीतराला मोहल्ला मकान संख्या 330 विजयवाड़ा नई दिल्ली बताया जा रहा है। पुलिस अब इसे गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अभियुक्त की तलाशी लेने के बाद उसके पास से एक मोबाइल फोन और विभिन्न बैंकों के 3 एटीएम कार्ड, एक ब्लूटूथ डिवाइस और नगद राशि 19,593 रुपया बरामद किया गया है। अब पुलिस इस पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। कल एनआईए की जो छापेमारी हुई थी उसके संदर्भ में कल देर शाम प्रशासन ने जानकारी दी। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के थावे रोड स्थित तुरकहा गांव में मोहम्मद कैफ नाम के एक व्यक्ति के घर एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी। इसमें 6 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और मोहम्मद कैफ को अहमदाबाद में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसकी नोटिस उसके घर चिपकाया गया। एनआईए के आने से पहले ही घर के सारे लोग फरार थे। घर पूरा सुनसान पड़ा था। एनआईए की टीम ने छापेमारी कर आवश्यक जांच पड़ताल की है। फिलहाल इस मामले में और कोई खास जानकारी नहीं दी गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किस मामले में यह छापेमारी हुई है इसको लेकर एनआईए की तरफ से स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया है। थावे थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी बीरेंद्र मांझी पिता नंदजी मांझी और दूसरा उपेंद्र मांझी पिता छेदी मांझी, ये दोनों उदंत राय के बंगरा थाना थावे के रहने वाले हैं। दोनों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। पुलिस अभी ने गिरफ्तार कर इन पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 13 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया है। पुलिस प्रशासन और विधि व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इन 13 पुलिस पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विद्यार्थी सहयोग शिविर का हुआ आयोजन, अनीमिया मुक्त बिहार अभियान की हुई शुरुआत, जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक, अभिलेखों के संधारण में कारगर है ई निबंधन व्यवस्था, प्रधानाध्यापक को किया गया निलंबित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
9: 9094
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
11: All right.

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
3: All right.

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: All right.

आरजू झूठ है, कहानी है आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: टॉप रामू काका, हाई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
6: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: All right.

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: प्रसाद क्लिनिक
4: स्त्री रोग ल्यूकेरिया यूट्रस का बाहर निकल जाना कान का बहना गठिया साइटिका कमर दर्द अधेड़ी थनैली चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुनो दिल से।
8: ऑलराइट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आर एस राघु। The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Defence Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to country's private defence industry to bolster indigenous manufacturing. This step marks an important milestone in promoting greater participation of the domestic industries in the defence ecosystem by enabling them to undertake indigenous production. India Today highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the Special Representative Talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry said in a statement that the two representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The two sides noted the progress made in implementing the important consensus reached between the leaders in Kazan in October 2024 and Tianjin in August last year. The government is closely monitoring the prevailing seasonal respiratory illness trends across the country through a robust pan-India surveillance network. It stressed that there is no cause for panic or alarm. Secretary of the Department of Health Research and Director General of the Indian Council of Medical Research, Dr. Rajiv Behel, was addressing the media in New Delhi today. He said the influenza viruses currently circulating in the country are consistent with the seasonal patterns observed in recent years. The Supreme Court today agreed to consider setting up a special bench to hear the centre's plea on OBC creamy layer criteria. The centre has sought clarification on the applicability of the 11th of March judgment of the Apex Court for candidates of the Civil Services Examination 2025. The Delhi government has said there is currently no shortage of onions or sugar in the capital. Delhi Chief Minister Rekha Gupta reviewed their availability and prices in the national capital today. Government said if the prices rise further, it will procure onions and sugar from a central government institution, NAFED, and arrange to make them available at various locations across the capital. It is also assured that the items will be sold at the procurement price, while the Delhi government will cover transportation and other related costs. The government has debunked claims circulating on social media that the central government will provide 1 year of free mobile recharge to all women on the occasion of Raksha Bandhan. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, said that the video is fake. The PIB said that no such announcement has been made by the central government. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 265 for 8 against India in their first innings as rain forced early stumps on day 3 of Colombo Test, Sri Lanka trailing by 238 runs. Earlier, visitors declared their first innings at 503, powered by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal's centuries. India are currently leading the two-match series 1-0. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Chhattisgarh and East Rajasthan tomorrow. Meanwhile, parts of Delhi NCR witnessed light to moderate rain during the day. IMD has said that cloudy sky conditions will continue to prevail over Delhi with spells of light to very light rainfall for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
2: Thank you. रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: क्या बोले थे, बुलाती है मगर जाने का नहीं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: का हुआ पुछू बेबी?
2: बेबी
1: वो का कोई ले बड़ू बताइबू की बीपी बढ़ाइबू
2: तो बर्दाश्त कर ले बना।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90.4 FM में।
2: थैंक यू जी। मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ गोपालगंज से।
1: कैसे हैं आप?
2: ठीक है जी, आप लोग कैसे हैं?
1: हम सब भी ठीक हैं
2: जी, हम लोग भी अच्छा ही है। थोड़ा धूप धूप निकला है और हमको गाना सुनना है।
1: बता दीजिए।
2: ओ बाबुल प्यारे, ये गाना है ओ बाबुल प्यारे, हुए पायल की सरगम, यही गाना सुनना है।
1: और गाना सुनाना भी है किसी को?
2: जी, जितने भी अपना दोस्त साथी है लो रेडियो रिंगिन का, उसको अपने मित्र दोस्त साथी लोग को सुनाना है।
1: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंगिन 90.4 FM।
2: जी जी।

0: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी मैं पप्पू ठाकुर बढ़िया बाजार खटिया गोपाल बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है जी।

0: कौन बोल रहे हैं? भारती मैम। आज तो मौसम अच्छा है मैम।
1: हाँ आज मौसम ठीक है,
0: बजट भी है थोड़ी।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
0: क्या हो रहा है अभी? तो हम देवरिया में है, गाँव में नहीं है, देवरिया आए हुए हैं। आज तो पहली बार में ही फोन लग गया हमारा, तो कॉल कर देते हैं, फरमाइश कर ही लेते हैं ऐसे आने का।
1: बता देते कौन से गाने की फरमाइश है?
0: गाने का बोल है पल पल दिल के पास, रविंदर का गाना है फिल्म ब्लैक मेल।
1: गाना सुनाना है?
0: हाँ हाँ, जितने भी हमारे श्रोता गण है सबके लिए है, और परिवार के सभी सदस्यों के लिए है।
1: जी जी फिर
0: जब सुनाइएगा। कितना बजे तक आ जाएगा गाना?
1: आज शाम को आ जाएगा।
0: आ जाएगा, चलिए अच्छा है, सुनवा दीजिएगा।
1: ओके फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494011। जी हाँ, 80029494011। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
7: रेशमा बोलते हूँ मैम।
6: क्या हाल बाजी? हमने हो गई ठीक बानी सन।
7: नाश्ता कम हो गई मैम?
6: हाँ हाँ, हमने की नाश्ता हो गई। सब ठीक हो गई?
7: हाँ,
6: क्या होता अभी?
7: बस लोग इंतजार होता है, सब बात हुई।
6: अच्छा अच्छा, और इंतजार की घड़ी खत्म हो गई।
7: मनरमा मैम कहाँ बनी?
6: ठीक बानी।
7: अच्छा, ठीक बानी मैम आके?
6: हाँ,
7: सब सुनाई।
6: और सब ठीक बाबे?
7: तो ठीक बा।
6: तो बता दी आज कौन सा गाना सुनेगा?
7: आज गाना सुनेगा हम अपना जान से ज्यादा माननी अपना भाई के।
6: अच्छा, और गाना सुना हूँ तो बा।
7: हाँ, रौरा सुने हम सब तो सुनी लोग रेडियो सुनाता।
6: चलिए ठीक बाबा, गाना प्ले करता नहीं सुनाते रेडियो 90.4 FM।
7: ठीक।

0: जी
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी शुक्रिया।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है, अच्छा है।
1: नाश्ता पानी हो गया है आपको?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: अभी क्या हो रहा है?
0: अभी बस खेत आए हैं अपने काम में।
1: किस की खेती की है?
0: धान है अभी तो।
1: अच्छा धान है
0: जी।
1: चलिए बढ़िया है। तो फसल कैसी है अभी?
0: अभी बढ़िया है, निंदाई बढ़ाई काम चल रहा है।
1: अच्छा जी, चलिए सब कर चुकी है। गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, फिल्म है शोर। जी
1: और गाना सुनाना है
0: जी मुकेश शर्मा जी है, श्रीपाल गोयल जी है, लोकेंद्र वर्मा जी है, दिलीप बहुरा जी है और सभी का और आप सबके लिए।
1: ओके गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
0: धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ghandi bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, नमस्ते
6: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 में।
5: मैं गोपाल ओझा ग्राम का गवासा जिला गुना से बोल रहा हूँ।
6: हाँ जी, कैसे हैं आप?
5: बढ़िया है, अच्छी है।
6: क्या हो रहा है अभी?
5: कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो घर पर ही है, कार्यक्रम चल रहा है आपके।
6: तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
5: वो सुनना है दिल तुम्हारा फिल्म को, कसम खा के कहो मुस्कुरा के कहो, कुमार पानवाल भाई नीचे।
6: और गाना सुनाना भी है?
5: हाँ, हमारे दो सुनील साहू जी है, मकसद ज्योति साहू जी है, मांगीलाल धसवाल जी है, उनके लिए और आपके लिए।
6: जी जी, और सब ठीक है ना?
5: ठीक है, आप कैसी हो?
6: हम भी ठीक है।
5: अच्छा है,
6: गाना प्ले करते हैं।
5: जी करिए,
6: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: मनोरमा जी या भारती जी?
1: आप भी बता दीजिए।
0: हमको तो लग रहा है मनोरमा जी है।
1: नहीं, मैं भारती हूँ।
0: मेरा से मिस्टेक हो गया ना?
1: नहीं, होता है, आवाज कभी कभी मैच जाता है ना।
0: क्या और कुछ बताइए?
1: और सब ठीक है, आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: हम तो बढ़िया है। आपको कब से एक बार फोन लगाया था, अभी लगा ना तो आवाज ही नहीं आ रहा था, फिर अभी फोन किए तो लग गया। मौसम तो ठीक ठाक है ना उधर?
1: हाँ, मौसम ठीक है अभी।
0: सुने कहाँ निकल गई? नहीं आई है
1: ये तो बात मुझे नहीं मालूम है, और ये सारी बातें तो हमारी मैनेजमेंट ही आपको बताएगी।
0: नहीं हो रहा थी तो थोड़ा मन साइंड होता था, सब लोग साफ है और भारती जी भी थी तो वो भी चल गई बिना बताए ही किसी को।
1: नहीं, अच्छा।
0: नहीं हो दिव्या जी?
1: हाँ
0: अभी चल गई, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। कभी आप भी चल जाइएगा, कोई को पता नहीं चलेगा।
1: यहाँ पे तो सब आते जाते रहते हैं।
0: आते जाते रहता है। हाँ, हम लोग तो मान लीजिए पुराना लिस्टनर है, 14 साल हो गया। अब वही सोच रहे हैं हम लोग कि हम लोग भी चल जाएगा।
1: नहीं, ऐसा नहीं, आप लोग हैं तो अच्छा लगता है।
0: तो जब मान लीजिए कि हम लोग का फेवरेट जो है वो लोग सब चल जा रहा है, वही थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन क्या किया जाए। तो अभी तो लाइव चल रहा है कि रिकॉर्डिंग चल रहा है?
1: अभी तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, लाइव तो 12 बजे से शुरू होता है ना।
0: आज तो भोजपुरी एक्सप्रेस नहीं चलेगा, चलेगा?
1: कल चला था ना, कल संडे था।
0: कल तो मैं मैसेज किया ही था। तो आज कौन सा गाना सुना दीजिएगा?
1: हाँ बताइए।
0: हम तो भाई फेवरेट नीलकमल सिंह का है।
1: उन्हीं का सुना देंगे, बताइए ना।
0: नीलकमल सिंह का टेड सॉन्ग कोई भी चला दीजिएगा।
1: नीलकमल का कोई भी टेड सॉन्ग गाना सुनाना भी है?
0: हाँ, वो हमारा दुलारिया हरेंद्र जी है। तो पहचानते हैं उनको। तो वही बोल रहे हैं कि जा जा पलट के देखा बिना। कौन कौन है? जाया वो पलट के देखना, नीलकमल सिंह का है ना। वही वाला बजा दीजिएगा। और आप है, डेडिकेट आप है, हम है, पूरा फैमिली है, सब है।
1: गाना करेंगे, सुनते रहिए रेडियो जिमजिम 90.4 FM।
0: ये 5 बजे चलेगा ना? आज चलेगा ये कल?
1: आज ही, आज या फिर कल, मतलब दोनों दिन में चल ही जाएगा।
0: चलिए ठीक है,
1: ठीक है फिर।

0: प्रिंसिपल। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up, hello.
2: Now
1: pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: गुड मॉर्निंग दीदी।
2: गुड मॉर्निंग,
1: क्या हाल है?
2: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
1: मेरा भी ठीक है।
2: क्या हुआ?
1: अभी तो फोन लगाए सर, उस समय लगा रहे मोबाइल में बैलेंस ही नहीं था।
2: लेट से रिचार्ज हुआ है।
1: आज चलाकी किए हैं, उसीलिए लगा है, फोन पे नहीं लगता है। अभी कैसा बतिया करेंगे, जब तुरंत किए तो रिंग करने लगा। और सब बताइए?
2: और सब ठीक है।
1: पूजा जो है कि नहीं, लास्ट से मारी है तो?
2: हाँ, पूजा वजह हुआ है, करके आए हैं लोग।
1: और कल करिश्मा को आप गाना नहीं बजाएंगे, गुस्सा है गई थी।
2: आप ही ने डिलीट कर दिए सारा।
1: तो खिसिया गई थी, गुस्सा हो गई थी, बोले कि छोड़ देंगे, बजेगा तो।
2: बोले नहीं कि हम बजाने जा रहे हैं, तब तक आप पूरा
1: नहीं तो बोल रहे थे कि आप ही बताइए, 2 बजे के मैसेज किया, 2:30 बजे के, और 1 घंटा आधा घंटा वेट करके बजाना चाहिए, तो क्या 2-2 घंटे वेट कर रहे हैं?
2: क्या ही कीजिएगा, इतना सारा ये करने वाले हैं लोग, और मैसेज सुनना है।
1: अंकुश राजा की आवाज में एक सुबंधन सॉन्ग, एक गाना बता दीजिए, बहनी तो कब न भूलाए।
2: गाना
1: सुनाऊं के बाद आपको मनोरमा दीदी को, सोनी दीदी को, डायरेक्टर साहब को, पूरा रेडियो रिमझिम को सुनाना है, करिश्मा जी को सुनाना है।
2: जी, तो गाना प्ले करते हैं।
1: जी, आज तो 1 हफ्ते मेरा कम्प्लीट हुआ है, तो बजेगा ना गाना मेरा? ठीक है, चलिए
2: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो,
1: स्वागत है आपका रेडियो
0: भारती जी, उसका नाम
1: हेलो
0: हेलो
2: ठीक है। उस समय से इंतजार करते कर फोन भी लगा तो फिर क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं, बस यही कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बैठ के
2: दोनों आदमी। मिली जुली सरकार चल रहा है?
1: नहीं, अभी तो मैं कर रही हूँ, इसके बाद ये करेंगे।
2: चलिए, आज तो बात उनसे करना था, लेकिन चलिए।
3: हेलो
2: हेलो
3: जी,
2: मनोरमा जी नमस्ते।
3: नमस्ते,
2: चलिए ठीक है
3: जी जी।
2: और सब सुनाइए।
3: और सब बढ़िया, खाना वाना हो गया आपका?
2: खाना हम कॉल करके ही खाना खाते हैं। 12 बजे कॉल हुए, 1 बजे कॉल हुए, कॉल करेंगे इसके बाद खाना खाते हैं। आज के दिन आज छुट्टी रहती है ना हमारी?
3: अच्छा,
2: आज हमारी छुट्टी रहती है, आज फ्री टाइम रहते हैं, इसलिए मैं अभी फोन लगाया, इससे पहले नहीं लगाया था, लग भी गया। तो आज एक फरमाइश है, बताऊं?
3: जी बिल्कुल।
2: खुशबू सिंह की आवाज में है
3: जी।
2: पूछे जानी घूंगटा उठाइए बलम जी, दी ही कुछ और चीना मुंह दिखाइए बलम जी। अगर कहेंगे तो गुनगुना के भी सुना सकते हैं।
3: जी जी बिल्कुल।
2: पूछे जानी घूंगटा उठाइए बलम जी, दी ही कुछ और चीना मुंह दिखाइए बलम जी। यही सुना दीजिए।
3: जी जी, आप बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन
2: गाते तो है, लेकिन आप लोग गाने ही नहीं देते हैं।
3: अच्छा, हम लोग गाने नहीं देते हैं?
2: तो भारती जी कभी गवाती है नहीं है? नो, वो खुद को गाती है ना, हमें गाने देती है।
3: लेकिन हम तो आपको गवाते हैं, क्योंकि हम बहुत बार सुने, अच्छा लगता है।
2: हाँ, तो गवाना भी चाहिए।
1: अच्छा, आपकी जब जब रिकॉर्ड कराइएगा ना, गा के सुनाइएगा मुझे। ऐसे में ऐसे रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे जब तक आप गाइए।
2: तो करना ही मत। हाँ, करना ही मत। चलिए ठीक है, ठीक है। तो
1: डेडिकेट नहीं बताइए?
2: डेडिकेट आप ही लोगों को रहेगा, और जितने हमारे नाम से जानने वाले हैं सबको। मेरा नाम धनेश कुमार मित्रा, दिल्ली से।
1: अभी पूछ रही आपका नाम क्या है?
2: तो मैं बता दिया पहले ही।
1: रेडियो रिमझिम में कॉल किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो KHB 90.2 FM में।
6: नमस्ते दीदी।
5: नमस्ते,
6: क्या हाल बा?
5: हाल तो ठीक बार बा, बताए रहो कैसन बानी?
6: हाँ ठीक बानी। खाना वाना हो गल बा?
5: हाँ खाना हो गल बा।
6: कहाँ बन मनोरमा दीदी?
5: बानी होने अपन काम करता नहीं।
6: अच्छा ठीक है बा। हम ही कहता की ना लगे का तो फोन रिचार्ज खत्म हो गल मोबाइल में।
5: हाँ हाँ रिचार्ज खत्म रहा है, सर से बोल के रिचार्ज करवाई है।
6: रात नहीं है फोन
5: सुन।
6: गाना सुनने के बाद बजा दी नीलकमल की आवाज में बजा दी।
5: गाना के बोल बता दी।
6: रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन याद आवे बहन के, रक्षाबंधन के गाना सबसे पहले रहुआ के मनोरमा दीदी के, सोनी दीदी के, जितना सुनते हैं लोग वहाँ लोग के, गणेश भी सुनी है और हम सुने हैं, मनीष भी सुनी है।
5: ठीक बाबा, फिर गाना प्ले करने सुनत रही रेडियो रंजीम 90.2।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते
1: विकास कुमार हिंतापुर
0: जी, क्या हालचाल है?
1: आज का हालचाल बहुत खराब है यार।
0: क्या हो गया?
1: आज जैसे वो कंपनी में ड्रिल कर रहे थे, हम ड्रिल मशीन चला रहे थे, वो जो फिक्स वाला ड्रिल में मशीन नहीं होता है, तो हम ड्रिल कर रहे थे, तो दस्ताना जो क्या हुआ कि फंस गया ड्रिल में। मैं तो सोचा कि मेरा उंगली टूट गया, एक बंदे ने आकर के बंद कर दिया।
0: आपको कुछ नहीं ना हुआ?
1: क्या बताया हम मैडम, आज का यात्रा मालूम ना किसका मुंह देख लिए, सुबह सुबह सकल देख लिए।
0: अच्छा आप ठीक है ना?
1: हाँ हम ठीक है, अभी दिखाएंगे इसको, शाम को जाएंगे तो डॉक्टर।
0: अच्छा मुड़ उड़ गया है क्या उंगली?
1: मुड़ा नहीं है, दिक्कत कर रहा है, दर्द कर रहा है।
0: अच्छा खिंचाव पड़ गया है लग रहा है।
1: हाँ वो दस्ताने पूरा खींच गया ना।
0: शुक्र मनाइए कि टाइम से कोई आके बंद कर दिया।
1: पास में था एक मिस्त्री ने बंद कर दिया, वो देख लिया ना कि दस्ताना फंस गया है, उसको बंद कर दिया आकर के मशीन को।
0: थोड़ा ध्यान रखिएगा।
1: आप बताइए आप कैसे हैं मैम?
0: हम सब भी ठीक हैं।
1: अच्छा और सोनी मैम?
0: सोनी मैम भी ठीक हैं।
1: सोनी मैम से बात नहीं होता है। क्या उनका दूसरा प्रोग्राम चल रहा है क्या?
0: नहीं तो।
1: अच्छा
0: अभी क्या कर रहे हैं?
1: अभी तो काम वाम हो रहा है, कल निकल जाएंगे घर।
0: सही काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं।
1: जैसे कल निकल जाएंगे अपने गाँव गोपालगंज?
0: नहीं गाँव तो निकल जाइएगा, मतलब वो उंगली ये हुआ है, मुड़ा हुआ है, फिर वैसे ही काम कर रहे हैं।
1: नहीं ऐसे बैठे हैं हम कंपनी में।
0: अच्छा
1: सुपरवाइजर ने बोल दिया कि बैठे रहो आराम से, शाम को 5:30 बजे चला जाना। मालिक भी बोल दिया आकर के, मालिक भी बोला करके देख लिया ऑफिस में, बोला कि बेटा तू एक काम कर, तू बैठे रह, तू कुछ नहीं कुछ ना काम करो, तू बैठे रहो 5:30 बजे तू जा करके दिखा लेना, अच्छा लंच में चला जा। तो लंच में देखते हैं मैम, लंच में चले जाते हैं दिखाते हैं।
0: हाँ, लंच में ही चलते हैं।
1: लंच में निकल जाते हैं, दिखा लेते हैं
0: और दिखा के उनसे सब रेडी करके कल निकल जाइए।
1: हाँ दवा ववा दे देगा, मलहम वलहम दे देगा, गर्म पट्टी दे देगा, वो सेट हो जाएगा। क्या करिएगा मैम, बहुत जीवन में बहुत पेट के लिए बहुत दुख है ना।
0: जीवन में कष्ट भी है सुख भी है दोनों है।
1: हाँ क्या से क्या करना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ करके 1200-1200 किलोमीटर छोड़ छाड़ के आना पड़ता है, क्या करिएगा।
0: चलिए कोई बात नहीं,
1: इसलिए मेरा भी अंदर शौक है कि एक बार विदेश हम भी चले जाएं, घूम करके आ जाए, बस एक सफर दो सफर घूम करके चले जाएंगे।
0: हाँ तो शौक है तो पूरा कर ही लेना चाहिए।
1: पासपोर्ट बन गया है, अभी पासपोर्ट को कहीं लगाएंगे, लगा करके दुबई या नहीं तो सऊदीया में जाएंगे।
0: चलिए बढ़िया ही। तो
1: आज तो मैम गमाला पूजा है ना, वो माता जी का।
0: हाँ हाँ
1: आज मेरे गांव में भी है, मेरी मम्मी बोल रही कि बेटा आज वो माता जी के जा रहे हैं, माता जी के पास आज पूजा है।
0: कढ़ाई चढ़ाने जाते हैं लोग, पूड़ी वगैरह बनता है वही चढ़ता है।
1: हाँ पूड़ी वगैरह बनता है, वो सब खीर भी बनता है, वो एक सादा वाला खीर नहीं होता है, वो मिट्टी के बर्तन में बनता है।
0: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है
1: आज हमको? गाना सुनना है वो वाला, दिल की जो मानो तो जग रुक जाए, जग की जो मानो तो जान चल जाए, यही वाली मैडम।
0: अच्छा और गाना सुनाना भी है?
1: तो पहले आपको सुनवाना है। जितना रेडियो रेमियम सुनने वाला है सबको।
0: जी जी तो रखिए अपना ख्याल रखिएगा।
1: जी बिल्कुल। अच्छा जाते जाते टाइम हो गया आपका?
0: हाँ हाँ।
1: अच्छा चलिए अब एक ही बार बुधवार को बात होगा।
0: हाँ।
1: जब तक मैं घर चला जाऊंगा।
0: ओके फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो,
3: नमस्कार।
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। हाँ, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत दूर मोबाइल रख के बात कर रहे हैं।
3: नहीं,
2: हेलो, हाँ अभी आ रहा है। नाश्ता पानी हो गया आपका? हो गया है, क्योंकि रिचार्ज थोड़ा नहीं था, खत्म हो गया था, तो सर को भी बोल के
3: हम बहुत पीछे हो गए हैं। पीछे हो गया ना, आज तो नहीं बजेगा फरमाइश?
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पीछे नहीं है, ठीक है।
3: अच्छा, रिकॉर्डिंग आप ही का है ना?
2: नहीं, पूरा तो नहीं आ रहा।
3: अच्छा, चलिए तो और तो वही
2: और सब बढ़िया है।
3: हमको पहचानते हैं?
2: हाँ सर को,
3: बहुत बहुत धन्यवाद पहचानने के लिए। हम कहीं भी रहे, रेडियो को सुनते नहीं, फोन करते रहते हैं और फरमाइश सुनते रहते हैं। और अपने अभी तो छात्रा आए हैं, तो
2: अच्छा, छपरा में मतलब कुछ काम?
3: हाँ, मतलब कुछ काम ही शहर में है, तो किसी में टाइम निकल के आपसे बात कर ले।
2: बता दीजिए,
3: आज मुझे गाना सुनाइए। गाना का नाम है इसका ही बना।
2: कौन सा?
3: इसका ही बना।
2: इसमें भी एक बार गाना की लाइन बता सकते हैं?
3: गाना का नाम यही है, ऐ खुदा जब बना तो उसका ही बना, ऐसा गाना है। यही वाला
2: गाना सुना
3: जी आप सभी आज गए सभी दोस्तों को आज के लिए नया लाइन कर देना है गाने का, तो उतना भी नहीं मतलब
2: बहुत शोर हो रहा है पीछे आपके।
3: इधर बड़ा कुछ का पूजा कर रहा है ना?
2: अच्छा, हाँ हाँ,
3: आज कुछ है ना आप लोगों का? एक और बजेगा
2: आपको आज, नहीं तो कल बजने लगेगा।
3: और वो फ्राइडे वाला रिपीट नहीं करता है?
2: नहीं, फ्राइडे वाला नहीं रिपीट नहीं होता है,
3: इसलिए उस दिन मेरा हुआ था।
2: बजा आपका रिपीट नहीं हुआ?
3: हाँ हाँ, बजा है लेकिन रिपीट नहीं हुआ। चलिए तो चलते चलते धन्यवाद बोलेंगे और ये बोलेंगे, आइए जो फरमाइश पूरा कीजिए, नहीं करते।
2: ये तो थे आज फर्स्ट, पहली बार में ही आपका कल पूरा कर दिए थे।
3: कल नहीं, कल तो
2: हाँ, और दिन भी तो बोलते हैं तो करते हैं, आपका पहले बज जाता है।
3: मतलब आज मेरा एक सप्ताह हो गया ना, इसलिए बोले।
2: कोई बात नहीं, आइए, बजेगा आपका भी
3: आज। मस्त जो है
2: ओके जी।

0: हेलो मैडम,
1: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में
0: जी। साथ में आपको भी स्वागत है। गाना गाना सुनवाई हम,
1: बता दीजिए कौन सा।
0: और आने से उसको आई बहार बड़ी मदानी है।
1: और गाना सुनाओ के बाद।
0: गाना सुनाने के बाद ये पहले ना, पहले आप पहले रेडियो को सुनने वाले न, पहले उन लोग बाद में आपको।
1: अच्छा
0: बाद में आपको और आपकी बात होनी जी को यही गाना बात, क्योंकि आपको गाना उठा वही पसंद लेती है गाना। हाँ, खुद गाना बजाते हैं तो आपको कहने क्या जरूरत है।
1: क्योंकि हम खुद ही सुन लेते हैं।
0: हाँ सुन लेते हैं लोग, सारा आदमी कहते हैं मैडम आपको आप फलाने को फलाने फलाने। हाँ ये नहीं जानते हैं कि लोग पहले मैडम ही सुनती है।
1: सही बात है, पहले हम सुनते हैं।
0: कहने क्या जरूरत है, जितने रेडियो प्रेमी है लोगों की आवाज उठाए वो लोग सुन रहे हैं ना। हमारा रेडियो जाए पकड़े है ना, सबको अच्छा लगे, तब जो है भारती जी को स्वागत किया जाए गाना सुनाने के लिए। ठीक है मैडम,
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 FM में। नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे?
6: अच्छा है,
5: क्या हो रहा है अभी?
6: अभी तो अच्छा, फोन लगा 12 बज रहे थे।
5: अच्छा, इतना टाइम लग गया?
6: बहुत टाइम, सब कॉल किया। और समाचार बताइए कैसे है?
5: और समाचार ठीक है, आप सब ठीक है ना?
6: जी हम लोग ठीक है।
5: तो आज बता दीजिए फरमाइश अपनी।
6: फरमाइश राष्ट्रीय
5: गाने के बोल,
6: गाने के बोल बड़ा।
5: अच्छा, और सॉन्ग सुनाना भी है
6: जी आपको? जितना रेडियो है सब, जितना श्रोता दोस्त सुनते सबके साथ।
5: चलिए ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
6: जी मैडम, नमस्ते।

0: हेलो, सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू मैम। भारती मैम बोल रही हैं। एक बार तो पूरा कॉल रिंग होके कट गया मैम, ऐसा क्यों?
1: कुछ काम कर रहे थे।
0: क्या क्या हाल चाल है मैम?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: हम लोग तो अच्छे हैं, आप अच्छी हैं ना?
1: हेलो,
0: योर वॉइस योर चॉइस चलेगा ना?
1: जी बिल्कुल चलेगा।
0: आज हमको सॉन्ग सुना दीजिए, देखो दिन मूवी से, जब न माना दिल दीवाना कलम उठा के जाने जाने।
1: कौन सी मूवी है?
0: देखो दी।
1: अच्छा,
0: काजल का
1: गाना कौन सा बोले हैं?
0: जब न माना दिल दीवाना कलम उठा के जाने जाना, खत मैंने तेरे नाम लिखा। सुनाना है सबसे पहले आपको, सोनी मैम को, समरान रशीद को, राघव जी को, दिलीप भाई को, हरी को, असलम भाई को, किरण भाई को, और संसाद भाई को, बुखरा आनंद जी को, और जो भी रेडियो इंजिन जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए मैम, जुम्मा मुबारक मेरे तरफ से सभी को बोल दीजिए।
1: बिल्कुल।
0: ओके मैम, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। रेडियो रंजन में कॉल किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी दीदी, नमस्ते।
7: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
6: जी थैंक यू। कैसी हैं?
7: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: मैं भी अच्छी हूँ। वैसे आप बोल कौन थी हैं?
7: पहचानिए कौन?
6: भारती दी।
7: हाँ,
6: तब और सब कैसा है?
7: और सब बढ़िया है, आप सब कैसे हैं?
6: हम भी बढ़िया है। तब खाना हो गया है?
7: जी
6: अच्छा है। मुझे सॉन्ग सुनना है।
7: बताइए कौन सा?
6: बात कुछ समझ ना आई, कमी क्या हम में पाई, एक तरह

0: नफरत का पिला दिया, कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया। यही वाला सॉन्ग सुनना
1: जी। और गाना सुनाना है
0: जी आपको, सोनू सर को, सोनी दीदी को और जितने सुनने वाले हो इन सभी को। वैसे दीदी मेरा ना दिन बर्थडे था, ठीक है।
1: हाँ।
0: तो सोचे थे आने के लिए घूमने रेडियो रिमझे में, लेकिन जा नहीं सके,
1: क्यों क्या हो गया था?
0: टाइम नहीं मिला ना।
1: आप सुनी ही ना बोल रही हैं।
0: हाँ
1: हाँ
0: पहचान गई क्या दीदी?
1: हाँ
0: कोई दोस्त रहता लो तब ना साथ में जाने में थोड़ा।
1: अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ तो हम लोग हैं ही,
0: जी तो फिर
1: गाना
0: सॉन्ग हाँ
1: प्ले करते हैं
0: जी। थैंक यू,
1: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। कभी

0: हेलो जी नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
0: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार रेडियो छोटा संग्राम सोना मंडिया पूर्वी चंपारण बिहार से संजय कुमार सा।
1: जी कैसे हैं आप?
0: जी मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। कहिए ना कि आप बारिश रिमझिम रिमझिम हो रही है। हम लोग यही में अपना है पूछे हैं आपसे बात कर रहे हैं। मौसम ठंडा है सुहाना है।
1: चलिए बढ़िया है। तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: आज जब बारिश हो रहा है तो बारिश वाला सुना दीजिए। बरसा पानी इसी के ज्यादा जोर से नहीं बारिश हो रहा है।
1: अच्छा।
0: जी फुहार चल रहा है।
1: पर गाना सुनाना भी है किसी को?
0: सबसे पहले आपको आज आपको रेडियो गया संपन्न कर रहा हूँ। दोस्त दोस्त में हो गया से खाना से मोहम्मद साबिर जी राम लक्ष्मण को सुहा दिया। मैंने कहा कोटम से नरेश सोहनी दीपक दास गैबान ठाकरे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से राजिंदर जादव भारती संतलाल गौतम उत्तर प्रदेश मऊ से हमारे नाम से ज्यादा पहचान तमाम दोस्तों और विशेष करके रेडियो रिमझिम से मोहब्बत करने वाला संपूर्ण परिवार को खास करके मोहम्मद लाल अंसारी मधुबनिया है विशेष करके उनको सुनाते हुए रामचंद्र मुखिया लगाए हमारे नाम से जाना पहचान तमाम दोस्तों सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार। रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: बजाते या।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।